0: This is Like a Gold. CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like R. Radio.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
4: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: लाइक अ गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत।

0: Like a Gold. CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में। रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ। हमारे राम, बुक योर टिकट्स नाउ, विजिट www.eventimapolo.co.uk। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आर रेडियो।
1: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
2: No worries. I'm having fun on Play Ojo.
3: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
1: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
2: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
4: Feel the fun. Play Ojo.
5: 18 plus gamble aware.
6: रात भर न थमें न रुकें, क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।

0: ये है लाइका गोल्ड।
1: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
2: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।

निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानकोसी भी सच सोचे सोच न हो वही।

गावे को गुण वडियाईयां चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लै फिर दे, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर, कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोट।

मैं विसर ना जाए जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले जे तिस नदर ना आवे।

मन कोय मन्ने सुत होवे मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की शुद्ध मन्ने मोह चोटा ना खाए मन्ने जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए मन्ने मग ना चले पंथ मन्ने धर्म सेती सनबंध।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भाव।

होए ता लिखिए लेखे होए विनाश, नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। साला ही साला एती सुरत ना पाया, नदियां ते

तेरे भगत रसाले। होर के ते गावन से मैं चितनावन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई है भी हो।

नाहत जुग जुग एको वेश उगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध।

कर कर वेखै सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनात, जुग जुग एको वेश, एक दूजी बोला खोवें लख होवें लखवीस, लख लख

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगति छुटे संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवार।

0: Breakfast with Deep Raja. Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: Leica Gold, traffic and travel.
2: For on the elevated section is heavy going away from Hayes at Junction 3 eastbound towards Brentford at Junction 2. Now, the Heathrow Spur Road delays continue there, heading away from the main M4 carriageway southbound before the tunnels entering the terminals area. Into London, Park Royal, the North Circular Road, that's the A406, is currently queuing at southbound, heading down towards the Hanger Lane gyratory system. And in Kent, in the area of Bean eastbound, the A2 has currently got a lane closed. It's slow all down to a vehicle fire currently. That's between the Bean interchange heading down towards the Ebbsfleet turnoff. That's the latest.
3: At B&Q, get 20% off outdoor plans in store and 20% off selected outdoor living. You can do it. Offer ends 1st of June. For full T's and C's, see DIY.com.
4: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
5: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
6: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल
7: At all protected.
6: Visit travelhubworld.com.
8: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
9: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
10: चावल हो बेस्ट सब करे टेस्ट दिशा राइस का है जमाना दिशा बासमती राइस
11: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी सिंग्सबरीज कच्चा बाजार समीर बाजार मोर फूड्स सीरा साउथ हॉल डेगनम सुपरमार्केट ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड दिशा राइस कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस
12: इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की प्रस्तुति पुरुषोत्तम मास में आइए और दिव्य आशीर्वाद पाइए 17 मई से 15 जून प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक श्री मद भागवत पारायण और शालिग्राम पूजा भगवान विष्णु के 1000 नामों के साथ

0: साथ ही हर शनिवार श्री राज राजेश्वर गुरु जी के साथ सुंदर कांड पाठ और हनुमान चालीसा हीलिंग दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक। स्थान 22 मामस्टर रोड हेरो HA37RR। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 0208426 0678 और विजिट सिद्धाश्रम ऑफिशियल वेबसाइट।
1: हेरोल्ड न्यू वर्ल्ड ऑफ इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल्स फॉर रेस्टोरेंट्स कैफेज केटरर्स फूड टेकअवेज एंड फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑर्डर योर फ्री 2025 कैटलॉग टुडे। कॉल ऑन 0208 507 7900 or download the catalog from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
2: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
3: No more worries for me or you.
4: Southall Travel, at all protected.
5: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
6: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
5: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
6: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
5: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
6: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
1: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhaayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhaayu, Ayurveda that fits your life.
7: विल नहीं है ये रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन विल्स और प्रोबेट को फास्ट और आसान बनाते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444। अपनी फैमिली को सिक्योर करें। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन 0208-907-2444।
8: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
9: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: हमको तो यारा तेरी यारी जान से प्यारी। किशोर दा और आशा भोसले की आवाजों में सबसे पहले तो ये गाना मेरी ओर से आप सबके लिए। आरजी बर्मन के म्यूजिक पर नासिर हुसैन की फिल्म से लिया था, और उससे पहले आपने सुना सरगम फिल्म का गीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के म्यूजिक पर मोहम्मद रफी और लता जी की आवाजों में। और लीजिए, इन दो गीतों के साथ एक बार फिर से द ऋतु शर्मा शो शुरू हो गया है, और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। ये है लाइका रेडियो नेटवर्क, जहाँ पर आप सुन रहे हैं लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और क्या कही जाए आज के मौसम के बारे में, शानदार मौसम है, वही वैसा ही जिसका मुझे हर साल इंतज़ार रहता है, फाइनली आ ही गया, और दो चार दिन ऐसा ही रहने वाला है। हाँ, कुछ लोग ज़रूर शिकायत करेंगे कि रात में बहुत गर्मी हो जाती है, नींद ठीक से नहीं आती है, लेकिन शिकायत मत करो, ऐसा कभी कभी होता है। ये गर्मी हमें भी चाहिए, पेड़ पौधों को भी चाहिए। तो बातें होंगी इसके बारे में, और भी ढेर सारी बातें होंगी, यादें भी होंगी, गाने भी होंगे, आपके मैसेजेस पर भी नज़र डाली जाएगी, सब कुछ होगा। बस आप 1 बजे तक मेरा साथ देते रहिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आपको बताते चलें कि आज 1 पाउंड के बदले में आपको मिलेंगे 128.15 भारतीय रुपए। लेकिन और ये बता दें कि ये मैंने आपको भिजवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI यू के मोबाइल ऐप। लेकिन इसके अलावा अगर आप 1000 पाउंड भारत भिजवाते हैं तो आपको मिलेगा 75 पाउंड का वाउचर, और इसके अलावा अगर आप 2000 पाउंड से ज़्यादा ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको मिल सकता है 1 ग्राम गोल्ड कॉइन, और टर्म्स एंड कंडीशंस तो अप्लाई होगी ही।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.

0: किसी की नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक माइक्रो फूड कंटेनर्स।
2: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
3: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
2: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
3: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
2: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
3: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
2: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
4: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
5: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
4: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
5: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
7: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
8: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
7: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
8: गारंटेड
7: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
8: फोन 02085748410।
7: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
9: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
10: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स your travel mantra?
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Daniel. Prime location,
11: high appreciation
12: in Dubai.
13: हर crunchy bite में एक खास ethnic स्वाद, हर fry em shape में है वो बचपन की याद।
14: Snack time hunger को बनाए और be tasty with Jaymin's fry ems in different shapes and yummiest flavors like lemon chili mint, manchurian, masala, peri peri or Szechuan with best quality and same ethnic taste.
13: Jaymin fry ems available at your nearest ethnic grocery stores.
15: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
16: No worries, I'm having fun on Play Ojo.
17: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
15: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
16: Thanks, playtime's over. Mmm, lovely.
18: Feel the fun, Play Ojo.
19: 18 plus, gamble aware.
20: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com.
21: Feel good track, brought to you by Dairy Valley.
22: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.

0: आशा भोसले और अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में गाना जरा सा झूम लूं मैं, और इस गाने को सुनकर मेरा भी दिल हो रहा है कि जरा सा झूम लूं मैं और बहुत सारा घूम लूं मैं, क्योंकि मौसम ही इतना सुहाना है। तो आई एम श्योर आपने भी आज प्लान्स बनाए होंगे कि कहाँ जाना है, क्या करना है, शॉपिंग जाना है या फिर दोस्तों के साथ कहीं घूमने की तैयारी है, या फिर ऑलरेडी पिकनिक अपने गाड़ी में रखकर आप निकल चुके हैं। तो जो कुछ भी कर रहे हैं करते रहिए, जब भी समय मिले हमारा साथ देते रहिए, क्योंकि हमारा काम है आपको एंटरटेन करना, और हम चाहते हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें आपका भरपूर एंटरटेनमेंट होता रहे, आपको आपके मनपसंद गाने सुनने को मिलते रहे। ऐसी मेरी कोशिश रहेगी अब से लेकर दोपहर के 1 बजे तक ऐसे ही गाने सुनवाती रहूंगी। और जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको ये तो बता दूं कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम है ऋतु शर्मा, आपका साथ देती हूँ वीकेंड्स पर, यानी कि एवरी सैटरडे संडे 10 से 1।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो चलिए इस झंझनाते से मौसम में एक और झंझनाहट वाला गीत बजाने वाली हूँ। ये गाना मेरी ओर से आप सभी के नाम पर जाता है जिन्होंने बहुत सारे और बहुत प्यारे मैसेजेस भिजवाए हैं, तो चलिए एक नजर उन पर डाल ले।
1: ये है लाइका गोल्ड।
0: तो सबसे पहले शुरुआत करने वाली हूँ आज के मैसेजेस की हमारे विजय गुडूरी जी के मैसेज से, और कहते हैं आपने लिखा है कि आंसुओं की भी एक अजीब सी कहानी है, खुशी और गम दोनों की निशानी है, समझने वालों के लिए अनमोल है और ना समझने वालों के लिए पानी है। बात आपने बिल्कुल सही कही है, और आपने ये भी बताया है कि लास्ट वीक आपने शो मिस किया था क्योंकि आप कहीं बिजी थे, लेकिन आज आप हमारे साथ हैं, बहुत खुशी है। थैंक यू हमेशा ही प्यार के साथ साथ देने के लिए। फारूक मोहम्मद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गीतों को सुन रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। अर्जुन जी हमारे साथ, राजीव पटेल जी आप भी हमारे साथ हैं। क्या सुबह सुबह क्या भेजा है आपने खाने के लिए? पराठे बना रहे हैं और मक्खन वाले पराठे मिल्टन किंग्स बुला रहे हैं। बताइए इतनी दूर रहते हैं कैसे आ पाऊंगी? पास में ले लो घर, जब भी बनाओगे ना कुछ अच्छा फट से आ जाओगी। स्वागत है आपका इस शो में। जासू जी है हमारे साथ, वियाना में अनिल सोनी जी है, असलाव में सुरजीत जी सुन रहे हैं, हमारे भारत गंगारा हमारे साथ है, तोची जी हमारे साथ, और ये कौन है जिन्होंने मैसेज भेजा? यस सीमा हयाती आप भी हमारे साथ हैं, आई थिंक आप मैनचेस्टर में सुन रही हैं। स्वागत है आपका। मिसेस पे के चियांग साथ दे रही हैं, नरेंद्र बागिया हमारे साथ है और कहते हैं कि अर्ज किया है, देखें क्या अर्ज किया है आपने, कि कल हो आज जैसा, कल हो आज जैसा, महल हो ताज जैसा, क्या बात है, फूल हो गुलाब जैसा, और जिंदगी के हर कदम पर दोस्त हो मेरे जैसा, आपके जैसा। सही है, आपके जैसा दोस्त हर किसी को मिले, क्योंकि आप बहुत ही प्यार से हमें सुनते हैं, रेगुलर सुनते हैं और अच्छे अच्छे मैसेजेस भिजवाकर कंट्रीब्यूट भी करते हैं। सो थैंक यू नरेंद्र जी, स्वागत है आपका भी शो में। मृदु जी मिसेस शेख हमारे साथ हैं, थैंक यू। ये कौन है जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपका भी स्वागत है। संध्या भावसर हमारे साथ हैं, हमारे राजेश जी हमारे साथ हैं और कहते हैं आपको खुशहाल, गर्म और धूप भरी अच्छी शनिवार की बधाइयाँ। और एक ज़रूरी बात आपने हमारे साथ शेयर की है कि समय पर खुद को अप टू डेट करते रहना चाहिए, वरना जल्दी ही आप आउट ऑफ डेट हो

0: जाएंगे। सही कहा। थैंक यू, स्वागत है आपका भी शो में। कैंट में सलमा जी हैं, हैरो में महेंद्र जी हैं, सहर जी हैं, हरीश रुदा, रोशनी, विनोद जी, और ये कौन है, ये है हमारे साथ राखी, सार्थक और हितार्थ शाह। आप प्रोग्राम सुन रहे हैं हीरल। थैंक यू मनीषा शाह, ज्योति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके भी मैसेज के लिए। सुमित्रा रावल जी हैं वुडफोर्ड ब्रिज में, शेखर आनंद जी, शरफून, दिव्या हैरान, दिव्या जी हैरो से, निर्मला जी और बाकी के नाम बाद में कोशिश करूंगी, लेकिन फिलहाल तो समय हो गया कि ये गाना आप सभी के नाम पर बजा दूं।
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

ये था नौशाद जी का म्यूजिक, फिल्म का नाम गंवार जो 1970 में आई थी, राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला की फिल्म। विजय जी ये गाना आपको डेडिकेट करते हैं और आपके साथ साथ स्वीटी कारा भी इस गीत को पसंद करती हैं। शर्फून आप हमें सुन रही हैं और प्रज्ञा कहती है कि आज वो वाटफोर्ड टेम्पल जाने वाली हैं। प्रज्ञा मेरा भी प्लान तो है वाटफोर्ड टेम्पल जाने का, लेकिन आज है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि ऐसे ही गाने, ऐसे ही खूबसूरत

0: गाने में आपको सुनवाने वाली हूँ प्रोग्राम के अगले हिस्से में, क्योंकि आज हम जिन्हें याद करने वाले हैं वो एक बहुत ही प्यारे, बहुत अच्छे गाने दिए हैं जिन्होंने हमारे फिल्म इंडस्ट्री के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और उनका नाम क्या है मैं बताऊंगी आपसे बस थोड़ी ही देर में।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
2: ये है Like a Gold, 10:35 AM.
3: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: लेकिन उससे पहले हम आपको याद दिला दें कि इस समर को आप मेमोरेबल बना सकते हैं विद साउथहॉल ट्रैवल। उनके साथ बीच एक्सप्लोर कीजिए, सिटी घूमिए और अच्छी डील्स पाइए विद फ्लाइट्स एंड होटल्स एट ऑल प्रोटेक्टेड। और आपको बता दें कि 40 साल से ट्रस्टेड ट्रैवल पार्टनर हैं जिन्होंने ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड भी जीता है, तो देर किस बात की है। विजिट कीजिए साउथहॉल ट्रैवल पर या फिर उन्हें कॉल कीजिए 02057484410 पर।
3: Breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
4: Whatever you're celebrating, make it a moon pig. Birthdays, anniversaries, big moments, little ones. Even the ones you nearly forgot. From heartfelt to hilarious, soppy to savage. You'll find the card that hits the mark every time. And it's easy to personalise to make it properly theirs. Sorted, sent and delivered right on time. Plus, get 20% off with code JOY20. Because everyone deserves a...
5: Moonpig.com.
4: Terms and exclusions apply.
3: This is Ritu Sharma.
6: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 02087828833 और विजिट TravelHubWorld.com।
7: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
8: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
7: विजिट TravelHubWorld.com.
9: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
10: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
9: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
10: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
9: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
11: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
12: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
13: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
12: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
13: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
12: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
13: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
12: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.

0: Disha Rice is now available at Pick and Save, Kenton Road, Harrow. Join us this weekend for great offers and exclusive tastings.
1: Disha Basmati Rice.
2: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
3: अरे गुरु, आपके शो के टिकट ढूंढ रहा हूँ.
2: ये तो बताओ, कोई पता चला?
4: गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है. सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून.
2: तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
4: शीघ्र. क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून. टू बुक कॉल 0208514545.

0: डाउनलो बुक ऑनलाइन एट इवेंट ब्राइट
1: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड
2: बी पार्ट ऑफ ए हिस्टोरिक ग्रैंड ओपनिंग
3: एक्सपीरियंस द न्यूली इनॉग्रेटेड BAPS स्वामीनारायण मंदिर इन पेरिस अ वंस इन अ लाइफ टाइम स्पिरिचुअल जर्नी
2: ट्रेवल विद योर फैमिली एंड विटनेस दिस डिवाइन ओकेजन अलॉन्ग विद द आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज एंड अ पेरिस सिटी टूर
3: डिपार्चर 5th of September कॉल नाउ ऑन 02 03 773 633.
2: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
4: Eviction, tenant dispute, property ka masla. Kenton Solicitors London landlords or tenants ke liye fast action lete hain aur residential or commercial conveyancing plus commercial leases handle karte hain. Abhi call karein 02089072444. That's 02089072444.
5: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
6: 25? Seriously?
5: Sounds like Ojo time.
6: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bash Bonanza, plus instant payouts on winnings.
5: Sorry about the wait. How can I help?
6: You can help me celebrate. I won.
7: Feel the fun. Play Ojo.
8: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus gambler aware. T's and C's apply.
9: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
10: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज रेडियो डिजिटल या इवेंट सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड जल्दी करिए कॉल नाउ 02071321458 या लिखिए sales@laikaradio.com
11: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10pm on Leica Gold. Make it a date.
12: Feel good classics non-stop with Ritu Sharma. This is Leica Gold.
13: बन गया अच्छा
14: अच्छा जी
13: एक बहाना बन गया अच्छा
14: अच्छा

0: बन गया अच्छा।
1: मंचली फिल्म का ये गाना हमारी जासू जी को बहुत पसंद है, तो चलिए आपके नाम पर किया ये गाना। वत्सला जी आपका स्वागत है, और किरण कहती है ऋतु अच्छे गाने सुनवा रही हो, मैं आपके लिए बेसन का चीला भेज रही हूँ जिस पर आपने फ्लैक्स सीड्स डाले हुए हैं और सीसम सीड डाले हुए हैं। लग तो बहुत ही डिलीशियस रहा है, मुंह में पानी भी आ रहा है, मेरी ओर से आप ही खा लीजिए ना, एंड थैंक यू आप सभी का साथ देने के लिए। और बताते चलूं कि प्रोग्राम के अगले हिस्से में जिन जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर को याद करने वाली हूं, उनका नाम है राजेश रोशन।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: तो आज 1 पाउंड के बदले में आपको मिलेंगे 128 भारतीय रुपए, 374 पाकिस्तानी रुपए एंड 165 बांग्लादेशी टकास।
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Gold. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: So gold rate is 107.9 pounds per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: Like a gold. Ye hai like a gold.
2: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
1: तो चलिए बात कर लेते हैं आईपीएल में होने वाले आज के मैच की। और आज लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स की टीम्स के बीच में मैच होगा, और ये मैच दोपहर के 3 बजे से शुरू होगा। मैच का हाल हम आपको बताएंगे, आप बस हमें सुनते रहिए।
2: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
3: Ye hai like a gold.
4: The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
5: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
4: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
5: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
4: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram.

0: और मोहम्मद रफी साहब की आवाज में ये मस्ती भरा गाना मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ प्रमोद पटेल जी को, जिनकी की आज 65th बर्थडे है और उनकी वाइफ ने मैसेज भिजवाया है। और वो नीलम, जिनका नाम है नीलम, चांदनी, शालिनी और पूरी फैमिली प्रमोद पटेल जी को जन्मदिन की ढेरों बधाइयां भिजवा रहे हैं। हमारी ओर से भी प्रमोद जी आपको बहुत बहुत बधाइयां, और ये गाना आप ही के नाम पर था। और संध्या भाव सर कहती है कि क्या बात है ऋतु, आपने तो महफिल जमा दी। तो बस ये महफिल 1 बजे तक यूं ही जमी रहेगी, बस आपका साथ मिल जाए और क्या चाहिए। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में मैं आज यादें में बात करने वाली हूँ राजेश रोशन के बारे में, उनके कुछ गाने सुनवाऊंगी और कुछ किस्से भी उनके सुनवाऊंगी। आप हमारा साथ देते रहिए। एंड वंस अगेन प्रमोद पटेल जी, नीलम जी, चांदनी जी, शालिनी जी की ओर से और पूरे परिवार दोस्तों की ओर से आपको जन्मदिन की ढेरों ढेरों बधाइयां। मजे के साथ पार्टी शार्टी कीजिए, आज सैटरडे का दिन है और मौसम भी मेहरबान है, और क्या चाहिए।
1: Across Greater London, this is Leica Gold, 10:35 AM, DAB and online, a part of the Leica Radio Network.
2: The top stories this hour. Holidaymakers trying to travel by ferry to France are trapped in hours-long queues at Dover. Traffic's backed up because of enhanced travel checks brought in by EU border controls. Officials at Dover

कामचोर फिल्म का ये गाना, जिसे म्यूजिक से सजाया राजेश रोशन ने, और उससे पहले दूसरा आदमी फिल्म का गीत, जिसमें लता जी, किशोरदा और मोहम्मद रफी साहब की आवाजें, आप सबका फेवरेट गाना। इस गाने को सुनकर मुझे ढेरों मैसेजेस मिले हैं, सभी के नाम पर करती हूँ वो गाना। लेकिन आज ऐसे ही गाने सुनवाऊंगी। इन दोनों गीतों में राजेश रोशन का म्यूजिक था, और राजेश रोशन आप जानते ही हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत ही प्रतिभाशाली और सम्मानित म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और उन्होंने न सिर्फ अपने भाई राकेश रोशन की फिल्मों के लिए म्यूजिक दिया है, बल्कि और भी कई सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स की वो पसंद रहे हैं। 24 मई 1955 को उनकी बर्थडे आती है, 24 मई कल है, कल राजेश रोशन 71 ईयर्स के हो जाएंगे। सोचा क्यों ना आज यादें में उन्हें याद किया जाए। और हम सब जानते ही हैं कि वो जाने माने संगीतकार रोशन के बेटे हैं, राकेश रोशन के भाई हैं, ऋतिक रोशन उनके भतीजे हैं, यानी कि फैमिली में पूरा फिल्मी माहौल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके करियर की शुरुआत 1970 में हुई थी, जब एक फिल्म आई थी कुमारा बाप। उसके लिए उन्हें सबसे पहली बार ब्रेक मिला था, और उसके बाद उन्होंने एक और फिल्म में म्यूजिक दिया था, जिससे उन्हें

0: बहुत पहचान मिली और उसके लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी दिया गया और वो फिल्म थी जूली, जिसके गाने आज भी हम सबको बेहद पसंद है। तो जूली का गाना भी जरूर सुनवाऊंगी और उनके लाइफ से जुड़े हुए कुछ किस्से भी बताऊंगी, लेकिन फिलहाल एक और गीत हो जाए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो उस गीत को बजाने से पहले आपको बता दें कि आज £1 आपको देगा 128.15 भारतीय रुपए और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन बाय यूजिंग दी योनो SBI UK मोबाइल ऐप। और इसके अलावा अगर आप £1,000 भारत भिजवाते हैं तो आपको £75 का वाउचर मिल सकता है और अगर आप £2,000 से ज्यादा ट्रांसफर करते हैं तो आपको मिलेगा 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: Like a goat. ट्रेवल इन स्टाइल का वादा है, कहीं भी घूम कर आइए। फ्लाइट्स और हॉलीडेज की बेस्ट प्राइसेस के लिए हमारे पास आइए। अपने अर्ली बर्ड डिस्काउंट के लिए नंबर मिलाइए 02089540077। दैट्स 02089540077। आपके मन की तसल्ली के लिए ये फुल्ली बॉन्डेड है।
3: ट्रेवल इन स्टाइल।

0: यह धुन तैयार की है राजेश रोशन ने, और इसीलिए अगर उनके बारे में कहा जाए कि उनके संगीत में रूहानियत है जो सीधे दिल को छूती है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। वो गीत छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, या फिर दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, ये धुनें बिल्कुल अमर हो गई हैं, और आज इतने सालों बाद भी जब हम इनको सुनते हैं तो बिल्कुल नई सी लगती हैं। अनेकों धुनें बनाई हैं, और आज हम राजेश रोशन को ही याद कर रहे हैं यादें में। और मैंने आपसे कहा था कि उनकी लाइफ से जुड़े कुछ किस्से सुनाऊंगी, तो ऐसा ही एक किस्सा मैं आपको सुनवाने वाली हूँ, और ये किस्सा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Ye hai
4: like a gold.
0: तो आपको याद होगा कि 1979 में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म आई थी जिसका नाम था मिस्टर नटवरलाल। इस फिल्म का म्यूजिक भी राजेश रोशन ने ही दिया था, और इस फिल्म में गाना था मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो। राजेश रोशन चाहते थे कि ये गाना अमिताभ बच्चन खुद अपनी आवाज में गाएं, क्योंकि ये गाना कुछ ऐसा था जिसमें बच्चों को कहानी सुनानी थी, और हम सब जानते हैं कि अमित जी की आवाज में एक खास कशिश है जो इस गाने के लिए बहुत सूटेबल थी। और जब राजेश रोशन ने अमिताभ बच्चन को कहा कि मैं चाहता हूं कि ये गाना आप गाएं, तो अमिताभ बच्चन घबरा गए और उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो, मैं एक अभिनेता हूं, एक गायक नहीं। मोहम्मद रफी, लता जी, किशोरदा, इन सब की सुरीली आवाजों के बीच में मेरी बेसुरी आवाज को कौन सुनेगा, नहीं नहीं मैं नहीं गा पाऊंगा। लेकिन राजेश रोशन तो मन में ठान कर बैठे थे कि ये गाना उन्हें अमिताभ बच्चन की आवाज में ही रिकॉर्ड करना था। अब उन्होंने एक प्लान बनाया, अमिताभ बच्चन को फोन किया कि मैं आपके घर आ रहा हूं। अमिताभ ने कहा ठीक है आइए। अमिताभ बच्चन के घर राजेश रोशन अपना हारमोनियम लेकर चले गए और उनको कहा कि देखो गाना बहुत आसान है, आप कोशिश तो कीजिए। अमिताभ जी बड़े घबरा रहे थे, बहुत हिचकिचा रहे थे, लेकिन राजेश रोशन ने माहौल को इतना हल्का और इतना दोस्ताना बना दिया कि अमिताभ उनकी रिक्वेस्ट पर उस गाने को गुनगुनाने के लिए आखिरकार तैयार हो गए। और जब अमिताभ तैयार हो गए तो राजेश रोशन ने चुपके से एक टेप रिकॉर्डर निकाला और उसे ऑन कर दिया। अमिताभ बच्चन का घर था, वो आराम से बिना किसी झिझक के उस गाने को गा रहे थे, और वो गाना राजेश रोशन चुपचाप रिकॉर्ड कर रहे थे। और जब वो घर से गए, अमिताभ बच्चन के घर से गए, तो उन्होंने कहा कि शाम को स्टूडियो आ जाना। अमिताभ बच्चन शाम को स्टूडियो पहुंचे, उन्होंने वहां के सभी लोगों को स्टूडियो से बाहर निकाल दिया और अमिताभ बच्चन की आवाज में गाए हुए गाने को प्ले किया। और जब अमिताभ बच्चन ने उस गाने को अपनी आवाज में सुना तो उन्हें भी यकीन नहीं हुआ कि ये गाना उन्होंने ही गाया है। और तब उन्हें समझ में आया कि राजेश रोशन क्यों चाहते थे कि इस गाने में अमिताभ बच्चन की आवाज हो। और जब ये गाना रिलीज हुआ तो ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ, बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी की जुबान पर चढ़ गया। और आप जानते हैं इस गाने के लिए राजेश रोशन को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का और अमिताभ बच्चन को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का नॉमिनेशन भी मिला। अब चलिए इस गाने की इतनी बात की है तो हो जाइए गाना।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

बोलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पास पास, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भागो।
2: फिर क्या हुआ?
0: खुदा की कसम,

0: अमिताभ बच्चन, मास्टर रवि और साथियों की आवाजों में ये गाना था जिसे लिया था फिल्म मिस्टर नटवरलाल से। और ये गाना अक्सर ही कम बजाया जाता है और सोचा कि ये गाना अमिताभ बच्चन के करियर का पहला गीत था तो जरूरी से सुनवाया जाए। और शानदार म्यूजिक राजेश रोशन का, जिन्हें आज हम यादें में याद कर रहे हैं। और सोचिए, अगर अमिताभ बच्चन से राजेश रोशन ये गाना न गवाते तो फिर उनके बाद में जो गाए हुए गाने मेरे अंगने में या फिर रंग बरसे हम कैसे सुन पाते। और अब अगला गीत जो सुनवाने वाली हूँ वो इस फिल्म से लिया है, उस फिल्म से लिया है जिसके लिए इन्हें अवार्ड मिला था। फिल्म का नाम है जूली। बजेगा आपसे बस थोड़ी ही देर में।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोको नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे। अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर। रितु शर्मा ऑन लाइक अ गोल्ड।
2: Hello, hello, hello. Wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by Morning Mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m, like a gold and like a radio Midlands.
0: तो चलिए आपको याद दिला दें कि लाइका एक्स्ट्रा का जो पॉडकास्ट है उसका नया एपिसोड आ चुका है और इस बार का टाइटल है डोमेस्टिक वायलेंस, जिसे होस्ट किया है दीप राजा ने। जरूर सुनिए लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट, अवेलेबल है स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल और अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, best service with unbeatable price.
3: At all protected.
4: Visit TravelHubWorld.com.
5: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
6: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
5: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
6: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: Step into the new grand showroom of Kajal's Couture, Southall.
6: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
7: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
6: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Kajal's Couture, now open 7 days a week.
7: Kajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
11: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
12: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मळशे शांति, भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो। डिपार्चर 5 सप्टेम्बर ना। मंत्रा हॉलिडेज, कॉल करो 0203 7733. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
13: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. This is Ritu Sharma.
14: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 years of experience, 40,000 passengers every year. Star Tours is trusted for a reason by travelers who appreciate familiar comforts. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: राजेश रोशन ने अपने करियर में कई सारे सम्मान प्राप्त किए हैं उन्हें इस फिल्म के गाने के लिए, और उनकी एक और फिल्म आई थी कहो ना प्यार है, उसके लिए उन्हें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला। ये गाना अक्सर ही कम बजाया जाता है, इसलिए सोचा आज क्यों ना इस गाने को इस प्रोग्राम में जगह दी जाए। वैसे तो राजेश रोशन ने बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक दिया है, लेकिन अपने भाई की फिल्मों में उन्होंने बहुत ही शानदार म्यूजिक दिया है, और इसीलिए बॉलीवुड की जितनी भी सफल जोड़ी है उसमें राकेश रोशन और राजेश रोशन की जोड़ी का नाम जरूर आता है। कुछ फिल्में 99 से आगे की हैं जो म्यूजिक उनका है, बहुत पसंद है मुझे गाने, लेकिन 90s की भी बड़ी सारी हिट फिल्में हैं जिनका शानदार म्यूजिक है। अब देखती हूँ आखिरी गाना कौन सा बजता है, कौन सा गाना बजाने के लिए समय हमें परमिट करता है, तो वो गाना ज़रूर सुनवाऊंगी, और शायद वो गाना होगा आज की यादें का आखिरी गाना। आज हमने राजेश रोशन को यादें में याद किया और आप सबको उनके गीत पसंद आए हैं, तो बस थैंक यू, साथ देते रहिए। अभी तो प्रोग्राम 1 बजे तक यूं ही चलता रहेगा।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो याद दिला दे, 1 pound के बदले में आज आपको मिलेंगे 128 भारतीय रुपए, 374 पाकिस्तानी रुपए एंड 165 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is 107.9 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley.
2: Like a gold.
1: Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.
3: Ye hai
4: Like a Gold.
1: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: तो आपको याद दिला दें कि आज लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच में आईपीएल का अगला मैच होगा, और ये मैच दोपहर में 3 बजे से शुरू होगा, और मैच का हाल हम आपको बताएंगे, आप हमें सुनते रहिए।
1: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
3: ये है Leica Gold, 10:35 AM.
5: The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
3: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
5: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
3: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
5: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
8: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Leica Radio.
9: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
10: राम कृष्ण हरी. UK तयार आहात ना ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार व्हायला? येत्या 6 जून ला होते वाद्य महोत्सव 2026 रॉयल विंडसर रेस कोर्स SL4 5JJ. 100 ढोल 80 ताशे मराठी खाद्य संस्कृतीची चव घ्यायला आणि मराठी उद्योजकांना भेटायला नक्की या. महाराष्ट्राची परंपरा, संस्कृती आणि आनंदाचा जल्लोष आणि विठ्ठल नामाचा गजर हा सोहळा तुम्हाला लाइव्ह बघायला नक्कीच आवडेल. थेट भारतापासून UK पर्यंत सर्वांना जोडणारा एकच नाद वाद्य महोत्सव. टिकिट्स आता उपलब्ध आहे svrtuk.org. जय हरी विठ्ठल.
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danube, prime location,
11: high appreciation
12: in Dubai.
13: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
14: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
15: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of 4 amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
16: Classics to make your weekends feel good. This is Ritu Sharma on Like a Gold.

0: playoff final. They take on Hull City at Wembley for a place in the Premier League. Victory is said to be worth an estimated £200 million. Hull owner Agan Ilajala says he just wants the club back at the top of the table.
1: Believe me, I'm never concentrated in money in my whole life. If I was concentrated on money, nobody would buy a championship team. Because in this business, it's not the business that you can make money. But of course, I use the money as a fuel in my life.
0: A 52-year-old Essex van driver has been handed a criminal conviction for tooting his horn to catch a friend's attention. Jamie Spence pleaded guilty to sounding an unauthorised audible warning instrument on a vehicle. From Sky News, I'm Jenny Barsby.
2: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group.
3: Craving a little sunshine? Virgin Atlantic Holidays has the answer. This is your sign to high-five a superhero before breakfast in Florida. Or rainforest trek to hidden waterfalls in the Caribbean. Or step off your pier into the bluest of blue water in the Maldives. With Flying Club, save up to £300 this bank holiday weekend. Book in store, over the phone or online at Virgin Atlantic Holidays. Select routes. For T's and C's, visit virginatlantic.com. ATL protected.
2: Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
4: चलिए आइए फिर बात हो जाए मौसम की. और आज एक बार फिर से मौसम ड्राई रहने वाला है और ढेर सारी सनशाइन हमें मिलने वाली है. मौसम बहुत गर्म है. लंदन में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्रीज को टच कर सकता है. मैनचेस्टर में 22 डिग्रीज तक रहेगा और मिडलैंड्स में टेम्परेचर 27 डिग्रीज तक जाने की संभावना है.
2: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
5: Yeah, like a gold.
6: Like a gold.
2: Ritu Sharma.
4: यस, सही सुना आपने. मैं रितु शर्मा ही हूँ और यह है प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर. और इस आवर में आप सभी का स्वागत है. लास्ट आवर में कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स के साथ साथ सुनवाती हूँ. हम खेलते हैं थ्रीवर्स गेम भी, तो खेलेंगे पर पहले बजेंगे दो गाने बैक टू बैक.
2: लाइक अ गोल्ड, लेट्स रिटर्न टू द बिगेस्ट हिट्स बैक टू बैक. स्पॉन्सर्ड बाय travelhubworld.com. फॉर द बेस्ट सर्विस एंड अनबीटेबल प्राइसेस विजिट travelhubworld.com. travelhubworld.com.
7: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
8: ट्रैवल हब
7: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
2: Leica. Feel good classics non-stop with Ritu Sharma. This is Leica Gold.

0: आज मैंने शो में कुछ ऐसे गाने सिलेक्ट किए हैं जो ज्यादा करके कम बजाए जाते हैं, लेकिन आपको ये गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो बस ये जानकर मुझे और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। 12:13 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर ये है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और ऋतु शर्मा है आपके साथ दोपहर के पूरे 1 बजे तक। आपके ढेरों ढेरों ढेरों मैसेजेस मुझ तक पहुंचे हैं, सो थैंक यू आज की यादें को पसंद करने के लिए और शो को एंजॉय करने के लिए। मुकेश जसवंतरी जी, थैंक यू, ये गाना आपको अच्छा लगता है, चलिए हमने आपके नाम किया। और भारत में गिरीश जी सुन रहे हैं, कहते हैं मुझे आपके शो का इंतज़ार रहता है, बहुत प्यारे गाने चल रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। भारत में तो बहुत गर्मी चल रही है, लेकिन आपके संगीत को सुनकर ठंडक लग रही है, क्या बात है। और आप आरडी जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो ऋषि के भी फ़ैन है, और आपने साथ में मेरा भी नाम लिख दिया है, क्या बात है, मैं मेरा दिन बन गया, थैंक यू गिरीश जी। और आप चाहते हैं कि ये वादा रहा गाना मैं आपके नाम कर दूं, बिल्कुल मैंने आपके नाम किया, ये गाना मेरा भी फेवरेट है, बहुत मज़ा आता है मुझे भी इस गीत को सुनकर। इसके अलावा नैना शाह, थैंक यू मैसेज के लिए। संध्या भाव सर, परिंदर मथारू, हमारी वंदना जी, सत्यनारायण सैनी भारत में, ये हैं हमारे क्या नाम नहीं लिखा है आपने, एस के लिखा है आपके नाम के आगे, तो गीत पसंद कर रहे हैं, मुझे आपका नाम नहीं दिख रहा है ना, स्वागत है आपका। और ये है हमारे राजेश जी, साथ में है स्वीटी कालरा। भानु जी कहती हैं कि ये जो गाना आपने बजाया था ना, कौन सा वाला, ये रातें नई पुरानी, ये गाना मुझे पुरानी यादों में लेकर गया जब मेरी शादी हुई थी 1975 में, यानी कि 50 साल पहले की यादों में आप इस गीत को सुनकर खो गई, क्या बात है। इसके अलावा स्वाति भेज बॉर्डर से हमारे साथ है, हिमा थैंक यू। और ये कौन है जिन्होंने मैसेज भेजा है, कहते हैं वाओ ऋतु लवली सॉन्ग, मुझे मज़ा आ रहा है, लेकिन आपने अपना नाम क्यों नहीं लिखा है, नाम ज़रूर लिखिए। आपने नाम नहीं लिखा है, मैंने कोशिश भी कर ली, मुझे आपका नाम नहीं मिला, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद शो को इन्जॉय करने के लिए। जैस्मिन जी, अरुणा जी, थैंक यू। भारती जी, SS बोगल जी, बहुत लंबी लिस्ट है, तो सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आप शुरू कर देते हैं हमारा 3 वर्ड्स गेम का सिलसिला, क्योंकि इस आवर में हम खेलते हैं 3 वर्ड्स गेम और सुनते हैं कुछ ब्लैक एंड वाइट क्लासिक्स भी। तो आपको बता दें कि 3 वर्ड्स गेम क्या होता है, बॉलीवुड में बहुत सारे गाने हैं और उनमें से किसी एक गाने से शुरू की जो 3-4 लाइन्स होती हैं उनसे मैं 3 वर्ड ले लेती हूँ और आपको बताना होता है उन 3 वर्ड्स की हेल्प से कि गाना कौन सा है। हाँ, कुछ क्लूज भी देती हूँ, जैसे आज की जो 3 वर्ड्स हैं उसमें पहला है किनारे, दूसरा वर्ड है साथी और तीसरा वर्ड है सहारे। 1971 की फिल्म है ये, लता जी और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ है और आरडी बर्मन का म्यूज़िक है, ध्यान से सुनिए, आरडी बर्मन का म्यूज़िक है, लता रफ़ी की आवाज़ें हैं, 1971 की फिल्म है किनारे, साथी, सहारे। और मैं समझ रही हूँ कि इस गाने को किसी और गाने से ज़रूर कन्फ्यूज करेंगे आप, लेकिन ध्यान से सच सच सही सही बताइए कि ये गाना कौन सा है और अपना मैसेज हमारे इस नंबर पर भिजवाइए।
1: WhatsApp message Leica Gold now on 0744-232323. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तब तक मैं आपको याद दिला देती हूँ कि आज 1 पाउंड आपको देगा 128.15 भारतीय रुपए। और याद रखिए कि भारत पैसा भिजवाना चाहते हैं वाया योनो ऐप या फिर ब्रांच में जाकर एंड ऑफ जून से पहले, एंड ऑफ जून तक, तो आपको 1000 पाउंड के बदले अगर आप 1000 पाउंड तक भिजवाते हैं तो 75 पाउंड का वाउचर आपको मिलेगा एवरीडे जब भी आप भिजवाते हैं। और अगर आप 2000 पाउंड से ज़्यादा मनी सेंड करते हैं तो आपको 1 ग्राम गोल्ड कॉइन भी मिल सकता है। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: 3 heroes, 1 mission, to hijack snacks. Introducing new corn protein bites.
3: Wait, are we the heroes?
4: Of course we're the heroes.
2: These snacks are high in protein and ready to eat.
3: Why are you doing the serious voice?
4: Yeah. Why are you doing the serious voice?
5: I was trying to make it cooler.
2: Find new Quorn Protein Bite snack bags in supermarkets nationwide. Quorn, so tasty. Why choose the alternative?
6: ये है लाइका गोल्ड
7: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
8: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
7: एट ऑल प्रोटेक्टेड
8: Visit travelhubworld.com.
9: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
10: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
9: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
10: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
9: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
10: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
9: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
11: Ram Krishna Hari. UK, feel the power of Maharashtra. This 6th June, experience Vadya Mahotsav 2026 live at Royal Windsor Racecourse, SL4-5JJ, 100 Dol, 80 Tasha, Parampara, Sanskruti aur full-on Josh ka mega celebration. Bharat se UK tak, ek hi rhythm, ek hi pride. Tickets live now at svrtuk.org. Leica listeners get exclusive discount. Use code LAIKA10. Vadya Mahotsav 2026. Feel the beat, live the legacy.
12: Location, location, location.
13: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
12: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
13: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
12: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
13: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
12: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
13: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
12: High appreciation.
13: In Dubai.
14: Herald. New world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
15: बोले तू ये क्या कर रहा है रे?
16: अरे गुरु आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ
15: ये तो बताओ कोई पता चला
16: गुरु गुरु
17: इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून
18: साधु शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए सुबह से शीघ्र
19: शीघ्र शीघ्र
17: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून टू बुक कॉल 0208-514-5400 बुक ऑनलाइन एट इवेंटब्राइट
11: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड
20: यू नो दैट क्लीन फ्रेश फीलिंग आफ्टर ब्रशिंग Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath. With over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
21: Travel in Style offer the best prices in flights and holidays to any destination of your choice. Call now for your early bird discount. 0208 954 0077. That's 0208 954 0077. Travel in Style. Fully bonded for your peace of mind. Travel in Style. Travel in Style. Travel in Style.
22: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
23: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: मोहम्मद रफी साहब की आवाज में शंकर जयकिशन के म्यूजिक पर यह गाना पिक्चराइज किया गया था हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार शम्मी कपूर साहब पर, जिनके हजारों फैंस तब भी थे और आज भी हैं। और आप जानते हैं कि इस बार शम्मी कपूर ही है हमारे इस बार के आर्टिस्ट ऑफ द वीक।
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: तो हमारा थ्री वर्ड्स गेम चल रहा है और बहुत सारे साथियों ने सही जवाब दिए हैं और बहुत सारे साथियों ने सही जवाब नहीं भी दिए हैं, क्योंकि आज के वर्ड्स कुछ ऐसे ही हैं जो कुछ और सुपरहिट गीतों में भी है। लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि याद रखिए, ये जो वर्ड्स हैं, ये जो फिल्म है वो 1971 में आई थी और इसमें म्यूजिक है आर डी बर्मन का। और किन्होंने सही सही जवाब दिए हैं मैं उनके नाम जरूर बताऊंगी, लेकिन फिलहाल शुरू करते हैं आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का सिलसिला और सुनते हैं पहला गाना।

0: ओपी नैयर के म्यूजिक पर बीआर चोपड़ा की फिल्म, जिसमें पहले मधुबाला होने वाली थी हीरोइन, लेकिन पिताजी के चक्कर में फिल्म हाथ से निकल गई और हीरोइन के बदरूप में एंट्री हुई वैजंती माला की। फिल्म उस जमाने में सुपरहिट थी, गाने उस जमाने में सुपरहिट थे, लेकिन आज भी सुपर डुपर हिट है। और आपके ढेरों मैसेजेस आए हैं कि ऋतु ये गाना हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू दीपिका, प्रोग्राम सुन रही हैं, स्वागत है आपका इस शो में। एंड विजय गुडूरी जी, आप फैंस पेंट कर रहे हैं और इतनी गर्मी, आज तो बहुत गर्मी है, शाम को करते हैं, यू नो शाम को थोड़ी सी गर्मी कम हो जाती है, लेकिन जब आपके साथ लायका है तो फिर किस बात की थकान और किस बात की परेशानी, है ना। ये गाना आपको भी डेडिकेट कर देते हैं। और इसके अलावा आपके ढेरों मैसेजेस मुझे मिलते जा रहे हैं। थ्रीवर्स गेम भी चल रहा है, बहुत सारे साथियों ने सही जवाब दिए हैं और किन्होंने सही जवाब दिए हैं, समय आ गया है उनके नाम बताने का।
1: Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Riti Sharma on Like a Gold.
0: बिल्कुल सही, ऋतु शर्मा ही है लाइका रेडियो नेटवर्क पर, जो है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और थ्रीवर्स गेम में आज जिन साथियों ने सही जवाब दिए हैं उनका नाम है दामिनी बेन। सबसे पहले आपने गीत को पहचाना है सही सही, उसके बाद नरेन पटेल, करसन पिंडोरिया, उल्लास, स्वाति बेस वाटर से, अजिंक्या, विनोद जी, शरफून, कामिनी एंड राज, गिरीशा, अमर जी, तोची पनेसर, राजेंद्र सिंह कालरा, महेंद्र बजारिया एंड उमेश शाह। आप सबका आंसर बिल्कुल सही है और जिनके नाम मैंने नहीं लिए वो थोड़ा और सोच सकते हैं कि गाना आखिर कौन सा था। और अगर नहीं पता चल रहा है तो कोई परेशानी, टेंशन वेंशन नहीं, आराम से बैठो, थोड़ी देर में सुनवाऊंगी, लेकिन फिलहाल बजाने वाली हूँ आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना।
3: This superhit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: इस गाने में वहीदा रहमान गजब की खूबसूरत लगी है और ये एक सस्पेंस वाली फिल्म थी। राजेंद्र सिंह कालरा, आप कहते हैं आपने देखी है और आपको मज़ा आया और आप फिर से देख सकते हैं। यस, अच्छी फिल्में होती हैं वो हम बार बार देख सकते हैं, मैं तो कईयों बार देख सकती हूँ, आई डोंट माइंड। और ये जो फिल्म थी, इस फिल्म का एक गीत था कहीं दीप जले कहीं दिल, इसके लिए लता जी ने फिल्म फेयर का बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड जीता था और इस फिल्म के लिए हेमंत कुमार को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का नॉमिनेशन भी मिला था। हेमंत कुमार जो जाने माने सिंगर रहे हैं लेकिन कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर भी थे। और आपको बता दें कि थ्रीवर्स गेम चल रहा है जिसमें बहुत सारे साथियों ने सही जवाब दिए हैं और अभी कुछ और नाम जुटे हैं। दिव्या जी, हैरो से आपने सही जवाब दिया है। दिनेश पोपट जी, आपका आंसर भी सही है। सहर जी, आपका आंसर भी सही है। और मानसी शेट्टी, आपने जो गाना बताया है ना, मुझे लग रहा था इसी गाने के साथ हमारे बहुत सारे साथी कंफ्यूजन करेंगे और ऐसा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, फिकर नॉट, बस थोड़ी ही देर में आज के थ्री वर्ड्स गेम वाला गाना बजाने वाले हूँ।
1: The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma. Brought to you by Southall Travel.
0: तो आपको याद दिला दें कि भाई आप समर का मज़ा ले सकते हैं साउथॉल ट्रैवल के साथ। उनके साथ टिकट्स बुक कीजिए, होटल्स और फ्लाइट्स सब कुछ इंक्लूडेड है। एक्सप्लोर कीजिए बीचेस को, सिटी में घूम कर आइए अपनी मनपसंद, और ये सब कुछ एट ऑल प्रोटेक्टेड है। आपके 40 साल से ट्रस्टेड ट्रैवल पार्टनर हैं और जिन्होंने विनर्स ऑफ द ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड भी जीता है। तो आज ही विजिट कीजिए साउथॉल ट्रैवल पर या फिर उन्हें कॉल कीजिए ऑन 0208-574-8410 पर।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: Three heroes, one mission, to hijack snacks. Introducing new corn protein bites.
3: Wait, are we the heroes?
4: Of course we're the heroes.
2: These snacks are high in protein and ready to eat.
3: Why are you doing the serious voice?
4: Yeah, why are you doing the serious voice?
5: I was trying to make it cooler.
2: Find new corn protein bite snack bags in supermarkets nationwide. Corn, so tasty. Why choose the alternative?
6: Like a gold. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
7: ट्रैवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
6: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
7: विजिट travelhubworld.com.
8: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
9: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
8: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
9: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
8: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
9: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
8: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.

0: Isha Rice is now available at Pick and Save, Kenton Road, Harrow. Join us this weekend for great offers and exclusive tasting. Isha Basmati
1: Rice. International Siddhashram Shakti Center की प्रस्तुति पुरुषोत्तम मास में आइए और दिव्य आशीर्वाद पाइए। 17 मई से 15 जून प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक श्रीमद् भागवत पारायण और शालिग्राम पूजा भगवान विष्णु के हजार नामों के साथ। साथ ही हर शनिवार श्री राज राजेश्वर गुरु जी के साथ सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा हीलिंग दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक। स्थान 22 मामस्टल रोड एरो HA37RR। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 0208426 0678 और विजिट सिद्धाश्रम ऑफिशियल वेबसाइट।
2: बी पार्ट ऑफ ए हिस्टोरिक ग्रैंड ओपनिंग।
3: एक्सपीरियंस द न्यूली इनॉग्रेटेड BAPS स्वामीनारायण मंदिर इन पेरिस। अ वंस इन अ लाइफ टाइम स्पिरिचुअल जर्नी।
2: ट्रेवल विद योर फैमिली एंड विटनेस दिस डिवाइन ओकेजन अलोंग विद द आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज एंड अ पेरिस सिटी टूर।
3: डिपार्चर 5th of September। कॉल नाउ ऑन 0203 773 633।
2: मंत्रा Holidays. What's your travel mantra?
4: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
5: No worries. I'm having fun on Play Ojo.
6: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
4: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
5: Thanks. Playtime's over. Lovely.
7: Feel the fun.
8: Play 18 plus gamble aware.
9: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
10: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
9: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
10: गारंटेड।
9: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल।
10: फोन 0208574 8410।
9: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
11: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
12: अपने बिजनेस को UK के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें Leica Radio Sales on 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@leicamedia.co.uk. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: बिल्कुल मोहम्मद रफी और लता जी की आवाजों में मेला फिल्म से था ये गाना, जिसमें आदि बर्मन का म्यूजिक था, लता जी और रफी साहब की आवाजें, और यही था हमारा आज का थ्री वर्स गेम वाला गाना। क्योंकि आपने भी गीत को सही पहचाना, राजीव पटेल जी बड़े दर्द में हैं, तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं, दिस इज जस्ट फॉर फन। अगर आप सही बता पाते हैं तो ठीक है, नहीं बता पाते हैं तो भी ठीक है, हम तो ये सब मस्ती के लिए करते हैं। सो ढेरों ढेरों मैसेजेस आए हैं, थैंक यू घनश्याम पटेल जी साथ देने के लिए। और आपने भी थोड़ा बड़ा मैसेज लिखा है जिसे मैं पढ़ती हूँ, लेकिन अब समय हो रहा है बस बाय कहने का, तो शायद कल फिर से भेजिएगा, और कल समय होगा तो ज़रूर आपका मैसेज भी पढ़ेंगे और उसका रिप्लाई भी करेंगे। इसके अलावा बस अब क्या एक गाना और बजेगा।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store. This is the Leica Radio Network across London, Manchester, and the Midlands. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan, and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो वन पाउंड के बदले में आज आपको मिलेंगे 128 भारतीय रुपए, 374 पाकिस्तानी रुपए एंड 165 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Leica Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So gold rate is 107.9 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
4: Leica Gold.
5: हाय, मैं हूँ अश्विनी। हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइका गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी। फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग आप सभी के लिए।
6: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
1: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: तो आपको बता दें कि आज IPL में जो मैच है वो है लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच में, और ये मैच दोपहर के 3 बजे से शुरू होगा। मैच का हाल हम आपको बताएंगे, आप हमारा साथ देते रहिए।
1: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
0: और लीजिए, अब समय हो गया है आप सभी से बाय कहने का। कल होगी, अगले हफ्ते नहीं गिरीश जी, कल भी आऊंगी, कल मिलूंगी आपसे मैं, कल होगी देर फिर से आपसे मुलाकात। लेकिन अगला गीत लेकर चलेगा न्यूज़ तक, न्यूज़ के उस पार आपके साथ होंगे अनुराग लाइका गोल्ड पर, फजीला होंगे लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर पर, एनानिका होंगे लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर। और आपको बता दें कि अगर आप नॉन स्टॉप क्लासिक सुनना चाहते हैं तो लाइका गोल्ड 2 ऑनलाइन आपके लिए है। 90s के गीत सुनना चाहते हैं तो लाइका रेडियो 90s ऑनलाइन आपके लिए है। और अगर आप पंजाबी गीत सुनना चाहते हैं तो लाइका रेडियो पंजाबी है आपके लिए। और अगर आप इस शो को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लिसन बैक पर जाकर अपने मनपसंद टाइम पर कभी भी इस शो को दोबारा सुन सकते हैं। कल तक के लिए मैं आप सभी को बाय कहती हूँ। मौसम बहुत ही प्यारा है, मज़े के साथ इंजॉय कीजिए और बस जब भी समय मिले हमें सुनते रहिए। थैंक यू सो मच ढेर सारे मैसेजेस भिजवाने के लिए और साथ देने के लिए। मिलते हैं कल, ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।
4: ये है लाइका गोल्ड।
7: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
8: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
7: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
8: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
7: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
9: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets, and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes, or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
10: Voice that turned love, heartbreak, and memories into timeless songs. Pepe's presents
11: Atif Aslam live in the UK.
10: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
11: Book your tickets now at AXS.
10: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
11: Exclusive radio partner, Leica Radio.
12: This Eid al-Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
13: Location, location, location.
14: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
13: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
14: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
13: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
14: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
13: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
14: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location.
13: High appreciation.
14: In Dubai.
15: Are we there yet?
16: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
17: Relax, I've booked the Uber already.
16: How? My roaming isn't even working yet.
17: I switched to Simzy before we left London.
16: Simzy? Since when are you the tech expert?
17: Since I decided I want a stress-free holiday.
18: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable dates in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
19: T's and C's apply.
20: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
21: आ सितंबर पेरिस में इतिहास लिखाई रहा है.
22: BAPS मंदिर नो ओपनिंग और स्टार टूर्स तुमने ले जा रहे हो. आप पवित्र यात्रा पर
21: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर
22: फ्रांस स्विट्जरलैंड इटली अने जर्मनी साथे
21: दर्शन पण अने यूरोप पण
22: सीट्स जल्दी भराई रही छे. आज ही बुक करो स्टार टूर साथे.
21: कॉल 02089002323 द स्टार टूर्स.
22: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन.
23: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
24: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
23: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स.
24: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग.
25: अप नेक्स्ट, गोल्डन रॉक विद अनुराग ऑन लाइक अ गोल्ड. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: Asian Commercial Radio Group. Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
1: हेलो एंड गुड आफ्टरनून. सबसे पहले करेंगे मौसम की बातचीत. इस वक्त का करंट टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस. माय गॉड, सनी एंड लाइट विंड्स, जो कि मिनिमम 15 डिग्री तक जा सकता है, वो भी आपके सोने के बाद. लेकिन सनसेट हो रहा है आज 8:57 पर, 8:57 PM.
0: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
1: गोल्डन राग संग सुरों से सजी वीकेंड वाली इस पाठशाला में आप सभी का है बहुत बहुत स्वागत. मैं हूं आपके साथ अनुराग, और बैक टू बैक गानों के साथ होगी इस घंटे की भी शुरुआत. कहीं मत जाइए, हमेशा की तरह आज भी बांधनी है आपको अपने अपने कमर की पेटी को. सुनते रहें.
0: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: TravelHub
2: at all protected.
0: Leica on Rug with Golden Rug.

0: लता जी और एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब की आवाजों में अभी आपने सुना मैंने प्यार किया फिल्म का ये खूबसूरत सा नगमा। राम लक्ष्मण साहब का संगीत और ये गाना जब भी सुनो, इस फिल्म के तमाम गाने आपका दिन बना देते हैं। और बिल्कुल भी किसी ने पूछा भी है हमसे कि आज बड़ा रोमांटिक का मूड लग रहा है, भाई आप सबका भी मूड वैसा ही होना चाहिए क्योंकि बाहर है बहुत धूप। और जब ये फिल्म का गाना हमने प्ले किया तो मुझे याद आया कि जब लेट 80s और 90s की अगर हम बात करते हो तो उस समय जो एक्टर और एक्ट्रेसेस अपने कॉस्ट्यूम में शामिल किया करते थे, जो प्रैप्स अगर हम उसकी बात करें, चाहे वो कैप हो, चाहे वो नेकलेस हो, या फिर शाहरुख खान की तरह कूल वाला एक आपके गले में पेंडेंट हो, लोग बड़ा फॉलो करते थे। और मैंने प्यार किया फिल्म में क्या फॉलो किया गया था मैं आपको बताता हूँ, ख़ासतौर पर लड़कों के लिए जिन्होंने फ्रेंड वाली कैप को फॉलो किया था। और जगह जगह पर याद है मुझे कि कैप्स बिक रही थी और मेरे घर पे भी पड़ी हुई होंगी। तो और यही सिलसिला रहा था दिल फिल्म के साथ भी, जहां आमिर खान की एक अलग स्टाइल की कैप को लोगों ने बहुत फॉलो किया था और शाहरुख खान अपने स्वेटर से लेकर अपने पेंडेंट तक हमेशा फॉलो किए गए। भाई ऐसा नहीं है कि ये ही सिर्फ 80s और 90s के लोगों ने अपने अटायर का जादू बिखेरा, लेकिन अगर हम ऋषि कपूर साहब की बात करें तो वो भी स्वेटर के बड़े ही प्रेमी थे, स्वेटर उन्हें उनके ऊपर बड़ा जचता भी था। इसी तरह विनोद खन्ना साहब भी और जीतू साहब और गोविंदा साहब भी अपने स्टाइल स्टेटमेंट के लिए जाने जाते थे, अलग तरह के कॉस्ट्यूम को, लाल पीले हरे रंग के कॉस्ट्यूम को पहनने के लिए। चलिए इसी के साथ बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, आपके प्यारे प्यारे संदेशों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगला गाना हम आपको सुना रहे हैं लता जी की आवाज़ में, फिल्म का नाम है जीने की राह, और उसके बाद आखिर में हम आपको बताएंगे आज का गोल्डन वर्ड। कहीं मत जाइए, सुनते रहे।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर आप भी इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक ब्रिटिश पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 128.15 पैसे। याद रखें आप अपने पैसों को बाय ब्रांच, ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: ये है Like a Gold. Like a Gold.
3: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
4: No more worries for me.
5: Southall Travel, at all protected.
6: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
8: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है? इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kijiye Kalpesh Patel on 0208-922-3344 24-hour line.
9: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from Herald Packaging.com. com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
10: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
10: High appreciation.
11: In Dubai.
12: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
2: Like a Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
13: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: लता जी की आवाज़ में जीने की राह, वाकई में ये गाना सुनिए तो आपको जीने की राह मिल जाएगी। अगला गाना हम आपको सुना रहे हैं जहाँ पर आपको मोहब्बत की राह पर ले जाएंगे, किशोर दा, फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी। एंजॉय करिए अगला गाना।
3: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ। टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: भाई जितनी शिद्दत और जितनी मोहब्बत के साथ किशोर दा ने इस गाने को निभाया है मेरे जीवन साथी फिल्म का गाना सुनने थे उतने ही प्यार के साथ आरडी बर्मन साहब ने इस गाने को लेकर अपना संगीत दिया है। लगी तमाम गाने इस फिल्म के बड़े ही अच्छे हैं लेकिन ये जो गाना है ना ये वाकई में किसी ने मुझे पूछा कि गूज़बम्प्स आ गए उनके हाथों में वाकई में ये रोंगटे खड़ा कर देने वाला ही गाना है। अगला गाना जो तुमको हो पसंद वही हम सुनाएंगे।
2: नमस्कार रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा।

0: महेंद्र कपूर साहब और आशा दाई की आवाज में वक्त फिल्म का ये खूबसूरत गाना। और याद रखिए, अगले गाने के बाद आप बताएं, हम सुनाएं और दिमाग की बत्ती जलाए वाली थीम का गोल्डन बर्ड बस आने ही वाला है, कहीं मत जाइएगा।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 128.61 पाकिस्तानी रुपीस 374.22 श्रीलंकन रुपीस 444.15 बांग्लादेशी टका 164.99 एंड 1 US डॉलर 1.34.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £107.94 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley. Non-stop classics. Leica Gold.

0: लता जी की आवाज में कब क्यों और कहां। 1970 में फिल्म आई थी कमाल की, इस फिल्म के तमाम गाने। और अब वक्त आ गया आपको बताने का, अगले घंटे आप बताएं और हम सुनाए वाली थीम के लिए जहां जलानी है आपको अपने दिमाग की बत्ती। जी हां, एक नहीं चार चार ऑप्शन देने जा रहा हूं आपको। चाहा चाहूं चाहत चाहेंगे, चाहा चाहूं चाहत चाहेंगे, बिना चाहत के कुछ हो भी तो नहीं सकता। अगला गाना आपको थोड़ी देर में सुना रहे हैं, लेकिन अपनी चाहत के पिटारे को आज खंगालिए और अगले घंटे के लिए तैयार हो जाइए।
1: This is like a gold. India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: तो भाई आज लखनऊ, यूपी की राजधानी लखनऊ में खेला जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच में 68वां मुकाबला, जो कि शुरू होगा दोपहर के 3 बजे।
1: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
2: Like a gold.
3: You. Yeah, you. Listening to the radio. Up to whatever. We just wanted to let you know there's a lotto draw coming up and...
4: It could be you.
3: Yeah, what he said. Lotto. From the National Lottery. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
6: फ्लाई मोर पे लेस with Like a Fly. Grab cheap flights to India, the Philippines, Africa and Pakistan. Book now, pay later. All ATOL protected. Call 0207-132-0700 or visit likeafly.com. Like a Fly. Fly more, pay

0: स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का गोल्डन राग संग सूर्य से सजी वीकेंड वाली इस पाठशाला में। मैं हूं आपके साथ अनुराग। एक बार फिर से बैक टू बैक गानों के साथ होगी इस घंटे की भी शुरुआत। आप बताएं और हम चुनाव वाली थीम के लिए आज के गोल्डन वर्ड्स हैं चाहा चाहू चाह चाहेंगे।
1: लाइक अ गोल्ड, लेट्स रिटर्न टू द बिगेस्ट हिट्स बैक टू बैक, स्पॉन्सर्ड बाय travelhubworld.com। फॉर द बेस्ट सर्विस एंड अनबीटेबल प्राइसेस विजिट travelhubworld.com। travelhubworld.com,
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता।
3: ट्रैवल हब
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: लाइक
4: अ ऑन रॉग विद गोल्डन रॉग।

0: जय जी ने और सादिक भाई ने बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस गाने को हम तक पहुंचाने के लिए। और पहला गाना हमने आपको अपनी तरफ से सुनाया था, यानी कि गोल्डन राग की सुपर वाली जो महफिल है, वीकेंड वाली जो पाठशाला है, उसके जरिए। और आप बताएं, हम सुनाए वाली थीम के लिए आज का गोल्डन बर्ड है, आपको जैसा कि पता ही है वैसा कि बहुत सारे गाने हम तक पहुंच चुके हैं, सबकी चाहत का पिटारा खुल चुका है और हम तक उनके चाहत से लवरेज गाने पहुंच चुके हैं। चाहा चाहूं चाहत चाहेंगे, ये है आज का गोल्डन बर्ड। और अगला गाना किसकी फरमाइश के पिटारे से निकल कर आ रहा है ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन ये बता दूँ, ये जो गाना है इस गाने को सबसे ज़्यादा लोग सुनना चाहते हैं, आज की थीम जो कि है चाहा चाहूं चाहत या चाहेंगे। आवाज़ किसकी है? रवि साहब की। समझदार के लिए इशारा काफी है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर आप भी इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 128.15 पैसे। याद रखें, आप अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: The Hilton sale is now on. And thankfully, it doesn't sound like this.
3: She's lost her flip-flop again. Sarah!
2: Instead, our sale sounds a bit more like this. With perfectly placed stays for wherever the summer takes you and 20% off for Hilton Honors members, you can swap chaos for comfort this year. Book now at Hilton.com. Hilton, for the stay. Offer subject to availability. Terms apply.
4: ये है लाइका गोल्ड।
5: Step into the new grand showroom of Gajul's Couture, Southall.
6: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
5: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
6: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajul's Couture, now open 7 days a week.
5: Gajul's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
7: Fly more, pay less with Leica Fly. Grab cheap flights to India, the Philippines, Africa and Pakistan. Book now, pay later, all ATOL protected. Call 0207-132-0700 or visit leicafly.com. Leica Fly. Fly more, pay less.
8: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
9: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
8: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
9: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
8: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
9: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
8: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
10: चलो जाइए एक नवा सफर पर
11: सिरीन हॉलीडेज अपने पूर्व अफ्रीकाना स्थलों की मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे। कंपाला, नैरोबी, मुंबासा, जांजिबार अने दारिसलाम साथे जिंजा अने मचिसन फॉल्स।
12: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ।
11: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे। वधु माहिती माटे
12: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
11: 0116266481 पर। वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर।
13: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
14: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर।
13: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
14: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
13: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
14: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
13: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
14: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danio, prime location,
13: high appreciation
14: in Dubai.
15: A reliable airline excellent in-flight entertainment and delicious food. All this at a low, low price. Connect with Travel in Style. Great choice of airlines to exciting destinations. Match your style to your budget. Only at Travel in Style. 0208 954 0077.
16: Har crunchy bite mein ek khas ethnic swaad. Har fry em shape mein hai wo bachpan ki yaad.
17: Snack time hunger ko banaye aur be tasty with Jaymin's fry ems in different shapes and yummiest flavors like lemon chili mint, manchurian, masala, peri peri aur shizwan with best quality and same ethnic taste.
16: Jaymin fry ems available at your nearest ethnic grocery stores.
18: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
19: Mom always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
20: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
21: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
22: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: आपका खुद का और हम सब का दिन बनाने के लिए, इस गाने को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पहले से ही आप सभी का। रफी साहब की आवाज में दोस्ती फिल्म का ये गाना था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने इस फिल्म का संगीत दिया था और ये गाना हम तक पहुंचाया है। बाढ़ आई है भाई बाढ़। हंसा वोरा जी, संध्या भावसर जी, निर्मल कीर्ति जी, फरीदा गुलाम अली जी, निर्मला जी, दिनेश पोपट, रेणु जी, संतोष जी, मनु जी, सुमित चौरसिया, पंकज वर्मा और कुसुम जी ने बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस गाने को हम तक पहुंचाने के लिए। अगला गाना आ रहा है जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले ये इन्फॉर्मेशन, फिर गाने के बारे में चर्चा।
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: तो जनाब ये इन्फॉर्मेशन है किशोर कुमार के सारे फैंस के लिए, स्पेशल म्यूजिकल नाइट फीचरिंग केतन इंद्रानी, संजय एंड द 515 बैंड। इट टेक्स प्लेस ऑन फ्राइडे 19th of June एट द प्रिंस रीजेंट होटल चिंगवेल एसेक्स। और हम है यानी कि रेडियो लाइका रेडियो पार्टनर है एक्सक्लूसिव गोल्ड रेडियो।
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
3: लाइका गोल्ड
4: ऑन राग विद गोल्डन राग। Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: किशोर दाव लता जी की आवाजों में दो चोर फिल्म का गाना हम तक पहुंचाया है कंचन जी, प्रदीप जी और नीता जोशी जी ने. बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ.
3: Holiday breaks are brought to you by South Hall Travel.
1: तो भाई आप लोग भी इस बार समर बनाइए यादगार साउथ हॉल ट्रेवल के साथ में. एक्सप्लोर कीजिए बीच ब्रेक, सिटी स्केप्स एंड मोर विद हॉलीडे डील्स विद इंक्लूड फ्लाइट्स, होटल एंड ऑल एट ऑल प्रोटेक्टेड. और इस पे आप ट्रस्ट इसलिए कर सकते हैं कि 40 वर्षों का 40 सालों का भरोसा और साथ ही साथ ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड विनर साउथ हॉल ट्रेवल. विजिट कीजिए साउथ हॉल ट्रेवल और कॉल कीजिए, नंबर है 0208 574 8410.
3: Holiday breaks were brought to you by South Hall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Leica Extra Podcast Update.
1: लगे हाथ आपको पॉडकास्ट का भी हम अपडेट देते हैं. इस बार पॉडकास्ट एपिसोड 17 होस्टेड बाय दीप राजा और क्वेश्चंस बड़े ही दिलचस्प. इज डोमेस्टिक वायलेंस ओनली फिजिकल अब्यूज? लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजॉन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स.
3: लाइक एक्स्ट्रा इज हियर. गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव.
4: द हिल्टन सेल इज नाउ ऑन एंड इट डजंट साउंड लाइक दिस. Instead, it sounds more like this. And with 20% off for Hilton Honors members. Book now at Hilton.com. Hilton. For the stay. Offer subject to availability. Terms apply.
5: Ye hai Leica Gold. 10:35 AM.
6: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
7: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
6: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
7: विजिट TravelHubWorld.com.
8: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
9: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
8: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
9: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
8: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
9: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
8: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
10: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, euro change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money, send joy. Western Union makes money from currency exchange.
11: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalog today. Call on 0208 507 7900 or download the catalog from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.

0: मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी। रफी साहब की आवाज में धर्मवीर फिल्म का ये गाना सुने थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने इस फिल्म का दिया था संगीत, लेकिन हम तक पहुंचाया ये गाना भरत गंगाराम जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया भरत जी, आपने इस गाने को हम तक पहुंचाया।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 128.64 पाकिस्तानी रुपीस, 374.29 श्रीलंकन रुपीस, 444.23 बांग्लादेशी टका, 164.98 एंड 1 यूएस डॉलर 1.34.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £107.94 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
3: ये है
4: Leica Gold.
1: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: IPL 2026 का 68वां मुकाबला लखनऊ में होने जा रहा है, लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच, जहां पंजाब किंग्स ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है।
1: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
5: London's biggest classics all day. This is Leica Gold.

0: उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल जी की आवाज में मन फिल्म का ये गाना आज की थीम को ध्यान में रखते हुए हम तक पहुंचाया था उल्लास जी और हर्षदा जी ने। लेकिन यकीन मानिए अगला जो गाना आने वाला है ये तो मैंने पहली बार सुना है, लेकिन आप लोगों ने यकीनन सुना होगा। आज की थीम को मद्देनजर रखते हुए गाना हम तक पहुंचाया है जगदीश जी ने। जग को जीत लिया आपने जगदीश जी, और अगला घंटा है आपके लिए गोल्डन राग के तीनों ऑप्शंस के साथ, तो कहीं मत जाइए, सुनते रहिए।
1: ये है लाइका गोल्ड।
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
3: फोन 02085748410।
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।

0: या कस्टडी का इश्यू, इसे अकेले फेस मत करें। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी एक्शन लेते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444। आज ही एक्शन लें 0208-907-2444।
1: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद माणो। डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज। कॉल करो 0203-773-6333। मंत्रा हॉलिडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
2: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com।
3: On Rag with Golden Rag।
4: तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

0: एरी पवन, लता जी की आवाज में बेमिसाल फिल्म का ये खूबसूरत गाना आपने सुना और इस फिल्म का संगीत दिया था आरडी बर्मन साहब ने। चलिए अब वक्त आ गया है आपको आज की गोल्डन राह के तीनों ऑप्शंस बताने को। उससे पहले कायदे प्लस कानून इस खेल के, इस कंपटीशन के, या जो भी आप कहें, आपको हम तीन ऑप्शन देंगे जो कि गानों के होंगे ए, बी एंड सी। और जो ऑप्शन आपको पसंद आए उसे वोट की तरह कास्ट करें और अपने दिए गए वोट वाले ऑप्शन को विजयी बनाएं। जी हाँ, बिल्कुल चुनाव की तरह, हम वोटिंग की तरह इस खेल को खेलेंगे। तो ए, बी एंड सी ऑप्शंस मिलने के बाद आपको उनमें से एक ऑप्शन चुनना है, उसे वोट की तरह कास्ट करना है हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर। और जिस गाने को लेकर सबसे ज़्यादा हमें वोट्स रिसीव होंगे वो गाना बन जाएगा हमेशा की तरह आज का गोल्डन राग। तो पेशे खिदमत है आपके लिए आज के गोल्डन राग के तीनों ऑप्शंस। ऑप्शन ए है, तुमने मुझे देखा हो के मेहरबान, फिल्म का नाम है तीसरी मंजिल। ऑप्शन बी है, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, फिल्म का नाम है यादों की बारात। और ऑप्शन सी है, ऐसे ना मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा, फिल्म का नाम है डार्लिंग डार्लिंग। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए आज के गोल्डन राग के तीनों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रफी साहब की आवाज में तीसरी मंजिल, फिल्म का खूबसूरत गाना। एंड ऑप्शन बी, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, यादों की बारात, किशोरदा की आवाज में। और ऑप्शन सी, फिर से किशोरदा की आवाज में, ऐसे ना मुझे तुम देखो, फिल्म का नाम है डार्लिंग डार्लिंग। वोटिंग लाइन्स हो चुकी हैं ओपन, जो भी ऑप्शन आपको पसंद हो उसे वोट की तरह कास्ट करें। अगला गाना आ रहा है हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक शम्मी कपूर साहब के ऊपर पिक्चराइज किया, ये गाना बड़ा ही सुख देने वाला है आपको। लेकिन याद रखें, वोटिंग लाइन जब तक ओपन है अपने अपने वोट कास्ट करते रहें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर आप भी इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 128.15 पैसे। याद रखें, आप अपने पैसों को वाया ब्रांच, ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: ये है लाइका गोल्ड।

0: रफ़ी साहब की आवाज़ में हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक शमी कपूर साहब के ऊपर पिक्चराइज किया गया बॉयफ्रेंड फिल्म का ये गाना। और एक बार फिर से हमें आपको बताना आज के गोल्डन राग के तीनों ऑप्शंस। ऑप्शन ए है तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, फिल्म का नाम है तीसरी मंजिल। ऑप्शन बी है चुरा लिया है तुमने जो दिल को, फिल्म का नाम है यादों की बारात। और ऑप्शन सी है ऐसे ना मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा, फिल्म का नाम है डार्लिंग डार्लिंग। और ये है तीन ऑप्शंस आपके पास, जो भी ऑप्शन आपको पसंद हो वोट की तरह कास्ट करते रहें और अपने पसंद के गोल्डन रॉक को आज विजयी बनाएं।
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: हाल क्या है दिलों का हमसे पूछो सनम, सबको इंतजार है कि कौन सा गाना आज का गोल्डन राग बनने जा रहा है। बस वोटिंग लाइन हो चुकी है बंद और चुना जा चुका है आज का गोल्डन राग, थोड़ी देर में होगा आपके साथ।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: LemFi is only 1 pound ke badle Indian currency mein 128.64 Pakistani rupees, 374.24 Sri Lankan rupees, 444.3 Bangladeshi taka, 164.95 and 1 US dollar 1.34.
2: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £107.94 per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
4: Ye hai Leica Gold, 10:35 AM.
2: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
1: आज का गोल्डन राग सुनाने से पहले चलिए जल्दी से सुनाते हैं आपको अभी का स्कोर ताजा अपडेट। लखनऊ सुपर जायंट और पंजाब किंग्स के बीच में खेला जा रहा 68वां मुकाबला लखनऊ के अंदर 7.2 गेंदों का हो चुका है खेल। लखनऊ सुपर जायंट्स पहले बल्लेबाजी करते हुए 72 रनों का स्कोर खड़ा कर चुकी है लेकिन 3 विकेट का नुकसान भी हो चुका है।
2: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय Remitly, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द Remitly ऐप टुडे। Remitly UK लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द FCA।
3: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।

0: रफी साहब की आवाज में तीसरी मंजिल फिल्म का गाना, जिसे आपने चुनकर सबसे ज्यादा वोट देकर बनाया आज का गोल्डन राग। जल्दी से लेते हैं नाम, किसने किसने इस गाने को दिए हैं वोट। प्रीति जी फ्रॉम बेल्जियम, संतोष जी रानी फ्रॉम स्लाव, विजय, महेंद्र पटेल, हंसा वोरा, महेंद्र रंजना कुकाड़िया, अयूब चौहान जी, मिसिज इकबाल बेगम, दिनेश पोपट, शेखर उल्लास जी, जगदीश जी, रानी सुनाहे, सुरेश एंड अर्जुन। एक और लिस्ट का नाम पढ़ रहा हूँ, खुश हो जाइए। नीता जोशी, अमर, चिंटू, निर्मला जी, संध्या बागसर, इंदिरा, विजय घुनोवा, हंसा मिस्त्री, राजकुमार, हंसुमती जी, निर्मल किरीट, सुमित चौरसिया, पंकज वर्मा और सालिम अख्तर। आपकी फरमाइश वाला गाना भी आने वाला है। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, कल होगी आपसे मुलाकात। नेक्स्ट आ रही हैं सरिता जी, जो सुनाएंगे आपको अच्छे अच्छे से गाने। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें और हमेशा जुड़े रहें लाइका नेटवर्क के साथ। और हाँ, धूप बहुत रहती है बाहर, कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन जरूर लेकर निकलें, क्योंकि गाने सुनते वक्त कोई भी अड़चन नहीं आनी चाहिए। टेक केयर, बाय बाय, खुश रहें, मस्त रहें और सुनते रहें।
1: ये है लाइका गोल्ड।

0: गुड आफ्टरनून। आज है सैटरडे, मई महीने की 23 तारीख एंड 4:12 हो चुके हैं। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को एंजॉय कर रहे हैं, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून। इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन, तो चीयर अप। आज तो मौसम भी बहुत खूबसूरत है, तो चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, और वैसे भी मुस्कुराते चेहरे हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं। आज के प्रोग्राम में एक बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सोच रही हूँ कहूँ या नहीं कहूँ। अगर आप मुझे जवाब देंगे यस सरिता वी वुड लव टू नो, तो ज़रूर मैं बताऊँगी। समथिंग हैपन इन द ट्रेन, पर क्या हुआ मैं बताना चाहती हूँ आपको, लेकिन सोच रही हूँ यस और नो। तो बताइए मुझे, जानना चाहते हैं या नहीं जानना चाहते हैं? अगर जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा मुझे। व्हाट्सएप का नंबर तो याद ही होगा आपको, अगर नहीं याद है तो बता दूँ कि हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या है। तो सुनिए ध्यान से, और अगर पहली दफ़ा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो मैं जानना चाहूँगी आपसे कि कहाँ बैठे आप सुन रहे हैं इस नंबर पे।
1: WhatsApp message like a gold now on 0744-232323.
0: Right, इस नंबर पे आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं और पूछे मुझसे कि सरिता क्या बताना चाहती हो। बताना चाहती हूँ लेकिन बस थोड़ा सोच रही हूँ कि यस और नो, बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। समथिंग हैपन इन द ट्रेन, क्या हुआ जानना चाहते हैं आप, तो जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। राइट, और क्या हो रहा है आज के इतने खूबसूरत मौसम में? व्हाट हैव यू प्लान? गार्डन में बैठे हुए प्रोग्राम सुन रहे हैं या अंदर एसी चल रहा है और नज़रें हैं टेलीविज़न पर एंड देख रहे हैं और सुन रहे हैं ये प्रोग्राम, तो भी मुझे अपने होने का एहसास ज़रूर दिला दें, मुझे बता दें कि क्या कर रहे हैं आप, कहाँ पर हैं आप। चलिए अब आगे बढ़े, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए ज़रा जान लें कि आज SBI UK वाले क्या रेट दे रहे हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: राइट भाई, SBI UK वालों के ज़रिए अगर आप आज पैसे ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं इंडिया में कहीं भी, तो योर £1 इन ब्रिटिश स्टर्लिंग कैन गेट यू 128 rupees and 15 paisas। और ये भी बता दूं कि SBI योनो ऐप के ज़रिए भी और ब्रांच में भी जाकर आप पैसे ट्रांसफ़र करा सकते हैं, और एंड ऑफ जून से पहले पहले कराएंगे तो यू कैन विन £75 वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर £1,000. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Sarita Sabharwal with your weekend classics.
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं, तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
3: 0208574-8410।
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें, 0208574-8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: चलो जाइए एक नवा सफर पर,
5: सिरीन हॉलीडेज अपनी पूर्व अफ्रीकाना स्थलों की मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे। कंपाला, नाइरोबी, मुंबासा, जांजिबार अने दारेसलाम साथे जिंजा अने मचीसन फॉल्स।
6: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ,
5: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे। वधु माहिती माटे
6: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
5: 0116266481 पर। वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर।
7: राम कृष्ण हरी, UK तैयार आहात ना? ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार व्हायला येत्या 6 जून ला होते वाद्य महोत्सव 2026 रॉयल विंडसर रेस कोर्स SL4-5JJ। 100 ढोल, 80 ताशे, मराठी खाद्य संस्कृतीची चव घ्यायला आणि मराठी उद्योजकांना भेटायला नक्की या। महाराष्ट्राची परंपरा, संस्कृती आणि आनंदाचा जल्लोष आणि विठ्ठल नामाचा गजर हा सोहळा तुम्हाला लाइव बघायला नक्कीच आवडेल। थेट भारतापासून UK पर्यंत सर्वांना जोडणारा एकच नाद वाद्य महोत्सव। तिकीट तिकीट आता उपलब्ध आहे svrtuk.org. जय हरी विठ्ठल.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
9: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danube. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel, and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
11: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com. Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
12: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: भी बहुत से मेरे साथियों ने मैसेजेस लिखकर भेजे हैं, यस सरिता हम जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था आज ट्रेन में. मैं सोची थी शायद मैं ही नोजी हूँ, मैं ही जानना चाहती हूँ कि किसी के साथ क्या हुआ, पर आप भी मेरे जैसे ही हैं. तो ऐसा ही होना चाहिए, यू नो, देखना चाहिए क्या हुआ. अगर कोई क्यूरियोसिटी पैदा करता है, आपको पूछता है कि आप जानना चाहेंगे कि क्या हुआ, तो जवाब तो हाँ ही होना चाहिए. कौन से ऐसे लोग हैं जो नहीं जानना चाहते कि कोई नहीं किसी की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, हमें क्या मतलब है, हम नहीं कुछ भी जानना चाहते हैं. कौन कौन ऐसा है ये भी बता दीजिएगा. बहुत सारे मेरे साथियों के मैसेजेस मिल चुके हैं. विजय गनोवा जी, तोची जी, हंसा वोरा जी एंड रेनू जी, रानी इंसला, उल्लास इन टोरंटो, विनी विनोद एंड वरुण जी, महेंद्र बरजारिया जी, संध्या भाव सर डांस कर रही हैं, दिव्या इन हैरो डांस कर रही हैं, जैस्मिन जी, अर्जुन जी, भारती जी, आप सभी जुड़ चुके हैं हमारे साथ. एंड रेनू जी ने आई थिंक पहली दफ़ा मुझे मैसेज भेजा है, कहते हैं वी वुड लव टू नो. राजीव जी कहते हैं, हाँ राजेश जी कहते हैं कि हाँ सच में मैं ज़रूर जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ. आप भी जानना चाहते हैं तो जल्दी से मुझे व्हाट्सएप कीजिए. जितने ज़्यादा लोग पूछेंगे मुझसे, मैं फिर उसमें कोई मसाला नहीं लगाऊंगी, वैसे की वैसे ही बताऊंगी क्या हुआ, लेकिन आपकी तरफ से इजाज़त चाहिए.
0: ये है लाइका गोल्ड. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
1: भी बहुत सारे मेरे साथी पूछना चाह रहे हैं अब तो कि क्या हुआ. ओके, थोड़ा सा बताती हूँ मैं पहले कि अगर आपके सामने वाली सीट पर कोई बैठा हो और लगातार एक तक आपकी तरफ देख रहा हो तो आपको कैसा फील होता है कि शायद मेरे फेस पे कुछ लगा है या कोई चीज़ उनको पसंद नहीं आ रही है, क्या है, या पहचानने की कोशिश करें. व्हाट डू यू फील कि अगर आपके सामने वाली सीट पर कोई बैठा हुआ आपको एक टक देखी जाए तो आप क्या सोचेंगे, वो क्यों देख रहा है, पहचानने की कोशिश कर रहा है या आपके फेस पर कुछ गलत चीज़ है जो देख रहा है, मुस्कुरा रहा है, कहूँ या नहीं कहूँ, बुरा मान जाएंगे जिनको कहूँगा, क्या क्या सोच रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं जल्दी से बताइए.
2: Sarita Sabharwal with your weekend classics.

0: फिल्म मेरा साया से चुना था मैंने इस गीत को, 1966 की फिल्म थी। बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं और मोस्टली आप ये सोचें पहचानने की कोशिश कर रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे कि देखा है हो सकता है ये वही है या कोई और है। कभी कभी होता है ना किसी की शक्ल बिल्कुल टोटली बदल चुकी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने सालों में भी बदलते नहीं हैं, तो क्या सोच रहे होंगे वो मुझे बताइए ज़रूर। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आपके मैसेजेस पढ़ के, तो ज़रूर बताइए। Holiday breaks are brought to you by South All Travel. Right, we make this summer memorable with South Hall Travel. Explore beach breaks, city escapes and more with holiday deals that includes flights, hotels and at all protection. Trusted for over 40 years and winners of the British Travel Award. Visit South Hall Travel or call South Hall Travel on 0208-574-8410.
1: Holiday breaks were brought to you by South Hall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
0: राइट, ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगी, बस कमर्शियल ब्रेक है। ब्रेक के बाद एक गाना, और वो गाना मैंने चुना है आई मिलन की बेला फिल्म से। उस गीत के बाद मैं बता दूंगी आपको कि क्या हुआ, ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगी।
2: So, what's on your to-do list today? Why don't you check if you're eligible for pension credit? It tops up your pension income and also opens up help with heating bills, council tax and more. Search pension credit on gov.uk or call 0800 99 1234. There's nothing to lose. Check today. Pension credit. Credit where credit's due. Eligibility criteria apply.
3: ये है लाइका गोल्ड travelhubworld.com। कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
0: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: विजिट travelhubworld.com।
4: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
5: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
4: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
5: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
4: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
5: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
4: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
6: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
7: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
6: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
7: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
8: You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Baidyanath. With over 100 years of Ayurvedic legacy, available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
9: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash-in carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
10: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
11: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
10: मसालेदार मसाला टैंगी टोमेटो सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स।
11: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
12: विल नहीं है ये रिस आपको नहीं लेना चाहिए। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन विल्स और प्रोबेट को फास्ट और आसान बनाते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444। अपनी फैमिली को सिक्योर करें। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन 0208-907-2444।
13: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
14: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
15: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।

0: गया।
1: तो बुरा
2: भाई मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानी जो मुझसे उन्होंने पूछा। वेल अब बता ही देती हूँ कि उन्होंने कहा कि 1989 से आपको रेडियो पर सुन रहे हैं और फिर 1991 से मैं टेलीविज़न पर भी देखते रहे हैं हम आपको, और कभी किसी इवेंट में मिलने का मौका नहीं मिला, और आज जब एकदम आपको देखा तो आप बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई हैं। क्या आपने जो आजकल सभी यू नो लाइक फेस लिफ्ट कराते हैं या वो बोटॉक्स कराते हैं, जो भी कराते हैं अपने फेस को, क्या आपने वो कुछ कराया है? तो मेरे को बहुत ज़ोर से हंसी आई और मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं कराया अपने फेस पर, और हाँ मैं खुश रहती हूँ और दूसरों को खुश रखती हूँ, बस यही राज है। तो कहने लगे, वो सामने मेरी वाइफ भी बैठी है, वो भी मुझे कह रही थी कि बात करो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे शुरू करूं। सो तो जब उन्होंने मुझे कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि 1989 से कोई इंसान फॉलो कर रहा हो, अभी भी सुनते हैं लाइका रेडियो, भी सुनते हैं लाइका दिल से, कहते हैं दिल से, पर मैं आपका ड्राइव टाइम शो भी सुनता था हमेशा। एंड हिज नेम वाज परवेज और उनकी वाइफ थी साथ में सलमा, दोनों बहुत ही प्लेजेंट कपल, बहुत प्यारे कपल, और उन्होंने बड़े प्यार से मुझे इतना एहसास दिलाया कि मैं यू नो उनको खुश रख सकती हूँ। मतलब कहती हैं कि आपको पता नहीं है कि कितने लोगों को आप मुस्कान देती हैं जब आप पूछती हैं कि कैसे मिजाज हैं, उम्मीद करती हूँ ठीक है, खुश हैं, खैरियत से हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई अपना है। क्या कभी आपको भी ऐसा लगता है कि सरिता ऐसे दिल से पूछती है कि कैसे हैं आप? अगर हाँ तो बता दीजिए। अच्छा, तो फिर उन्होंने मुझे कहा, फिर क्या लगाती हैं अपने चेहरे पर आप? सो ये क्वेश्चन अब उनकी वाइफ ने मुझसे पूछा कि क्या लगाती हैं अपने चेहरे पर। अब मैं क्या कहती, इतना यू नो ट्रेन में बैठे हुए और भी लोग सुन रहे थे, और फिर नेचुरली वो इंग्लिश में ही बात कर रहे थे तो आसपास के लोग भी सभी सुन रहे। तो मैंने कहा कि मैं बहुत सिंपल हूँ, जो भी चीज़ मुझे मिल जाती है मैं वो अपने चेहरे पर लगा लेती हूँ। किसी ने अगर मुझे कहा एलोवेरा जेल लगाया करो, तो मैं खूब सारा एलोवेरा मेरे घर में लगा हुआ है, तो मैं उसका पल्प जो है वो मैं चेहरे पर लगाती हूँ, बालों में भी, सर में भी लगा लेती हूँ। एंड देन किसी ने कहा ग्लिसरीन बहुत अच्छी है, तो मैं वो भी लगा लेती हूँ लेमन जूस डाल के। किसी ने कहा हनी बहुत अच्छी है, तो मैं हनी भी लगा लेती हूँ। सो जो दिल में आता है मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। तो कहते हैं कि माशाल्लाह ऐसे ही रहें, कभी आपको किसी की नज़र ना लगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू परवेज साहब, आप भी सुन रहे हैं, सलमा आप भी सुन रहे हैं, एंड आई होप कि आप भी अपनी मंजिल तक अब तक पहुँच गए होंगे। और थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मुझे प्यारे प्यारे मैसेजेस लिख कर भेजे। वैसे एक तो बहुत फ़नी कि लिखते हैं कि आपके पास सरिता जी टिकट नहीं होगी और आप इधर उधर देख रहे होंगे कि ओ माय गॉड कहीं चेकर ना आ जाए, और उन्होंने भांप लिया होगा आपके चेहरे पर कि आपके पास टिकट नहीं है। हाँ ऐसा नहीं है, राइट। तो जिन मेरे साथियों ने पूछा मुझसे उन सब के नाम ले लूँ जल्दी से। रेनू जी, रजेश जी, रानी जी, पहले तो तीन आर ही आ गए, उल्लास इन टोरंटो, एंड संतोष जी, इंतशा, मिसेस शेख, अर्जुन जी, सुमित्रा रावल इन वुडफुट ब्रिज, भारती डी जी, दिव्या इन हैरो, एंड विजय गनोवा जी, मोहम्मद अयूब चौहान साहब, प्रीति इन बेल्जियम, मंजीत कौर, चन्ना कपड़े सी रही हैं और साथ साथ कह रही हैं कि मैं आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ, पन्ना जी, रमेश जी पिनर में सुन रहे हैं आप भी, और जिनके नाम नहीं मैं ले पाई, हना एंड ये खुना मिसी शुक्ला, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: Right, a pound in your pocket can get you Indian rupees 128.63, Pakistani rupees 374.11, Sri Lankan rupee 444.28, Bangladeshi taka 164.90, and Afghani is 85.37, and US dollars 1.34.
3: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on LIKA Gold.
4: LIKA Gold.
3: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: And gold ka rate is waqt hai market mein £107.94 per gram.
3: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. Sarita Sabawal. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly. Proud to be the official partner of England cricket.
2: Right, IPL का आज मैच लखनऊ में हो रहा है. लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच. पंजाब किंग्स चोज टू फील्ड फर्स्ट एंड लखनऊ सुपर जायंट्स ने बना लिया 196 रन्स एंड 6 खिलाड़ी आउट हुए और उनके 20 ओवर्स भी कंप्लीट हो गए.
3: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
0: Leica Gold.

0: फिल्म अपराध से चुना गया गीत आप तक पहुंचा है, 1972 की फिल्म थी और अगला गीत हमें न्यूज तक पहुंचाएगा।
1: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
2: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
1: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
2: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
1: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
2: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
1: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
3: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
4: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
3: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
4: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
3: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
5: इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की प्रस्तुति पुरुषोत्तम मैच में आइए और दिव्य आशीर्वाद पाइए। 17 मई से 15 जून प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक श्री मद भागवत पारायण और शालिग्राम पूजा भगवान विष्णु के हजार नामों के साथ। साथ ही हर शनिवार श्री राज राजेश्वर गुरु जी के साथ सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा हीलिंग दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक। स्थान 22 मामस्टल रोड हैरो HA37RR। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 0208426 0678 और विजिट सिद्धाश्रम ऑफिशियल वेबसाइट।
6: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
7: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
6: ये तो बताओ, कोई पता चला?
8: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
6: साधु, तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
9: शीघ्र शीघ्र।
8: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208514500, बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
10: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
11: Packed for the trip? Gifts? Passport?
12: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
11: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
12: Simzy?
11: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
13: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's S-I-M-Z-Y.com. T's and C's apply.

0: basmati rice.
1: Disha Rice is now available at Pick and Save Kenton Road, Harrow. Join us this weekend for great offers and exclusive tasting.
0: Disha Basmati Rice.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
4: A September, Paris ma ithihas lakhai rahyo che.
2: BAPS mandir no opening. And Star Tours tamne lai jai rahyo che ap pavitra yatra par.
4: Europe na 3-9 divas na tours.
2: France, Switzerland, Italy and Germany saathe.
4: Darshan pan and Europe pan.
2: Seats jaldi bharai rahi che. Aaj ich book karo Star Tours saathe.
4: Call 02089002323. The Star Tours.
2: Travel once and you will travel again and again.
5: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
6: ट्रेवल इन स्टाइल का वादा है, कहीं भी घूम कर आइए। फ्लाइट्स और हॉलीडेज की बेस्ट प्राइसेस के लिए हमारे पास आइए। अपने अर्ली बर्ड डिस्काउंट के लिए नंबर मिलाइए 02089540077। दैट्स 02089540077। आपके मन की तसल्ली के लिए ये फुल्ली बॉन्डेड है।
7: ट्रैवल इन स्टाइल,
8: ट्रैवल इन स्टाइल,
7: ट्रैवल इन स्टाइल।
9: Sarita Sabharwal with your weekend classics. London's biggest classics all day. Like a gold.

0: हर कोई प्यार का भूखा होता है ना, बस प्यार दे प्यार दे प्यार दे। किशोर कुमार और उनके साथियों की आवाज़ें आपने सुनी फ्रॉम द फिल्म शराबी, 1984 की फिल्म थी। और आज के प्रोग्राम के सेकंड आवर का आगाज़ किया मैंने राजू बन गया जेंटलमैन के इस गीत के साथ, सीने में दिल है। ये गाना मुझे याद आ रहा है, आई कैन विजुलाइज कि इस गीत में शाहरुख खान एंड जूही चावला दोनों रोड पर हैं। पहले बस स्टॉप पे खड़े होते हैं, बारिश थोड़ा होने लगती है, फिर ये वहाँ से शाहरुख खान उन्हें खींच के ले चलते हैं, दोनों दौड़ते हैं रोड पर और रोड पे गाना डाल रहे हैं, गा रहे हैं दोनों। एंड देन आई कैन विजुलाइज शी वॉज वेयरिंग पोल्का डॉट स्कर्ट एंड ब्लाउज, बिग पोल्का डॉट्स की वाइट स्कर्ट थी एंड स्मॉल पोल्का डॉट्स की टॉप पहनी हुई थी। एंड देन इन द सेकेंड स्टेंजा शी चेंजेस वाइट, बिल्कुल वाइट, प्योर वाइट जीन्स एंड उसके साथ वाइट शर्ट पहनी होती है, एंड सेम फॉर शाहरुख खान एज वेल। सो किस तरह से पहले होता था ना कि गानों में हर स्टेंजा में गाने कपड़े बदलते रहते थे, और ख़ास तौर पर यश जी की फिल्मों में तो बहुत प्यारी शिफॉन की साड़ीज एंड कलरफुल बहुत अच्छी लगती थी, सभी का अपना अपना अंदाज। एंड इस फिल्म का संगीत दिया था जतिन ललित ने, और गाने इसके बड़े मशहूर हुए थे, लवेरिया हुआ, दिल है मेरा दीवाना, एंड दिस वन द वन आई जस्ट प्लेड फॉर यू। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए। ये गाना लिखा था मदन पाल जी ने, और बाकी के गाने देव कोहली ने भी लिखे थे, मनोज दर्पण से अलग अलग वेरियस लिरिसिस्ट थे जिन्होंने गाने लिखे थे इस फिल्म के। उम्मीद करती हूँ दोनों के दोनों गीत आपके दिल के करीब थे, आपकी कुछ पुरानी यादें ज़रूर ताज़ा हुई होंगी। अब ज़रा आगे बढ़ लें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: चलिए अगर उनकी ब्रांच में जाकर या फिर आप SBI योनो के ऐप के जरिए पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, इस वक्त रेट आपको मिल रहा है एक ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड के बदले 128 रुपीस एंड 15 पैसास। और अगर आप इनके ऐप से या फिर ब्रांच में जाके ट्रांसफ़र कराएंगे पैसे एंड ऑफ जून से पहले पहले, तो एवरी 7000 पाउंड के जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो 75 पाउंड का आपको वाउचर मिल सकता है एवरी डे। एंड ऑल्सो 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 पाउंड्स। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: At B&Q, get 20% off outdoor plans in-store and 20% off selected outdoor living. You can do it. Offer ends 1st of June. For full T's and C's, see DIY.com.
1: Sarita Sabharwal with your weekend classics. Like a
3: gold. Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
4: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
4: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
3: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
4: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
3: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
5: Travel in style ka vaada hai. Kahin bhi ghoom kar aaiye. Flights aur holidays ki best prices ke liye hamare paas aaiye. Apne early bird discount ke liye number milaiye 0208-954-0077. That's 0208-954-0077. Aapki man ki tasalli ke liye ye fully bonded hai.
6: Travel in style.
7: Travel in style.
6: Travel in style.
8: Travel ho best, sab kare test. Disha rise ka hai zamana.
6: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी सिंग्सबरीज कच्चा बाजार समीर बाजार मोर फूड्स सीरा साउथ हॉल डेगनम सुपरमार्केट ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड दिशा राइस कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस
7: स्टेप इनटू द न्यू ग्रैंड शोरूम ऑफ काजोल्स कचोर साउथ हॉल
9: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
7: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
9: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Kajal's Couture. Now open 7 days a week.
7: Kajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear. All in one destination.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: भी आज के प्रोग्राम में मिली जुले गीत है। आज कोई थीम नहीं था फर्स्ट आवर में भी और इस आवर में भी कुछ नहीं है। हाँ, आज के दिन जो फिल्म रिलीज हुई उसका एक गीत मैंने शामिल किया है, अभी कुछ ही देर में आपको ज़रूर सुनवाऊंगी। आपको मालूम है कि आज ही के दिन कौन सी फिल्म रिलीज हुई थी इन पास्ट और आपने देखी, आपको बहुत अच्छी लगी। मैं बात करूंगी अबाउट सावन की घटा, और सावन की घटा का एक गीत आ रहा है, लेकिन उससे पहले और भी बहुत कुछ।
3: ये है लाइक अ गोल्ड, 10:35 AM।
0: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोको नूडल्स।
2: ये गीत मैंने चुना है फ्रॉम द फिल्म विश्वास, 1969 की फिल्म थी, सुमन कल्याणपुर और मनहर उदास की आवाज़ है।

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: ये गीत हम जब जब सुनते हैं तब तब हमारे मन को बहुत भाते हैं। जगतार जी, थैंक यू, आपकी वहाँ गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग जी, और उम्मीद करती हूँ कि प्रोग्राम आप पसंद कर रहे हैं। आप हैं वैंकूवर में, इंजॉय करते हैं, आप कहाँ बैठे सुन रहे हैं, इंडिया में हैं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में हैं, या फिर अमेरिका में कहीं भी बैठे सुन रहे हैं, दुनिया में कहीं भी आप चले जाएँ, हम आपके साथ साथ रहते हैं। और आप टेलीफोन ऐप के ये कहीं भी हमें सुन सकते हैं, ऑनलाइन भी सुना जाता है, हर जगह लाइका रेडियो नेटवर्क। तो सुनते रहिए, इसी तरह से एंजॉय करते रहिएगा।
2: दिस इज सरिता सांभवाल ऑन लाइका गोल्ड।
1: राइट, भी आपको बता दें कि न्यू एपिसोड रिलीज हो चुका है, होस्टेड बाय दीप राजा, एंड इट्स अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस, ओनली फिजिकल अब्यूज। क्या आप सोचते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो सिर्फ फिजिकल होता है, तभी अब्यूज़ कोई करता है तभी है वो? एंड एज साउथ एशियंस, डू वी डाउन प्ले द सिचुएशन, मेंटल एंड हेल्थ ट्रामा ऑफ सर्वाइवर्स, एंड वेयर एसेसिबल सपोर्ट इज अवेलेबल। सो अगर आप देखना चाहते हैं तो लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट आप देख सकते हैं। सॉरी, इट्स अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
2: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। ये है लाइका गोल्ड। ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट ट्रेवल hubworld.com।
4: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
5: Atif Aslam live in the UK.
6: Oh, Julelal Kalandar mast mast da mast kalandar.
4: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
5: Book your tickets now at AXS.
4: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
5: Exclusive radio partner, Leica Radio.
7: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
8: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
7: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
8: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
7: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
8: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
7: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything, and this one is a villa.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube, prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
11: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallet. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money, send joy. वेस्टर्न यूनियन मेक्स मनी फ्रॉम करेंसी एक्सचेंज।
12: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ।
13: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन सालसा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल।
12: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
11: एविक्शन, टेनेंट डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी का मसला, कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स के लिए फास्ट एक्शन लेते हैं और रेसिडेंशियल और कमर्शियल कन्वेंसिंग प्लस कमर्शियल लीजेस हैंडल करते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444, दैट्स 0208-907-2444।
14: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well-planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
15: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, four pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
16: No worries. I'm having fun on Play Ojo.
17: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
15: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
16: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
18: Feel the fun. Play Ojo.
19: 18 plus, gamble aware.
20: Like a radio network. Proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.
21: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 साल का भरोसा, हर साल हजारों happy travelers, इसलिए families के लिए Star Tours experience अलग होता है. Visit startours.co.uk.

0: सावन की गटा फिल्म से चुना था मैंने इस गीत को, जो रिलीज़ हुई थी 22 मई 1966, और बहुत क्लासिक फिल्म थी, बॉलीवुड की रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म थी, जिसका निर्देशन किया था, जिसको डायरेक्ट किया था शक्ति सामंत साहब ने, बहुत खूबसूरत। और कौन कौन थे इस फिल्म में आपको पता ही होगा, वैसे तो मनोज कुमार थे, शर्मिला टैगोर थी, मुमताज थे इन द लीड रोल अलॉन्ग विद प्राण, जीवन, मदन पुरी, और संगीत तो दूर से पहचाने जाने वाला, यस, ओपी नैयर साहब का संगीत था और SH बिहारी साहब ने लिखे थे गीत इस फिल्म के। और इस फिल्म के सारे गाने सुपर डुपर हिट थे, जुल्फों को हटा ले, होंठों पे हंसी, आंखों पे, ये तो आपने सुन ही लिया गीत। इसके अलावा खुदा हजूर को भी, मेरी ज़िंदगी दे दे, और आज कोई प्यार से दिल की बातें कह गया, क्या ब्यूटीफुल गाने हैं, ज़रा हौले हौले चलो मेरे साजना। अब मेरे लिए कितना मुश्किल था डिसाइड करना कि कौन सा गीत प्रोग्राम में शामिल करूं, पर मुझे उम्मीद है मेरी पसंद आपको पसंद ज़रूर आई होगी। इस फिल्म का एक गीत महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में भी है, मेरी जान तुम पे सदके, आई लव दैट सॉन्ग एज़ वेल, किसी और रोज़ ज़रूर सुनवाऊँगी। सो कल 22 मई को ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, आज के दिन रिलीज़ हुई थी रेड रोज़, तो उसका गीत कल ही हमारे यहाँ से प्ले हुआ, इसलिए आई कांट प्ले द सॉन्ग, पर कोई बात नहीं। एक और फिल्म है जो इसी महीने रिलीज़ हुई 22 तारीख को ही, और उसका नाम था बाजार। 1982 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, बहुत खूबसूरत फिल्म जिसमें स्मिता पाटिल थी। 21 मई को ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, स्मिता पाटिल थी उस फिल्म में, तो उसका गीत भी आ रहा है, लेकिन पहले
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you today Pakistani rupees 374.15, Indian rupees 128.62 and Sri Lankan rupees 444.33, Bangladeshi taka 164.94, Afghanis 85.44 and US dollars 1.34.
1: Like Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Sabharwal with your weekend classics. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Right, gold ka rate is vakt chal raha hai, £107.94 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
2: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.
3: ये है
4: Leica Gold.
0: और ये गीत है फिल्म बाजार से। दो गीतों में से एक गीत चुनना मुश्किल था थोड़ा, लेकिन मैंने ये काम कर लिया भाई। एक गीत था दिखाई दिए यूं, लता जी की आवाज़ में, और दूसरा जो मैं प्ले करने जा रही हूँ जगजीत कौर जी की आवाज़ में। बहुत खूबसूरत फिल्म थी बाजार, अगर आपने नहीं देखी तो जब भी मौका मिले ज़रूर देखिएगा। फारूक शेख एंड स्मिता पाटिल के साथ साथ नसीरुद्दीन शाह थे इस फिल्म में। खयाम साहब ने संगीत तैयार किया था। 21 मई 1982 में रिलीज़ हुई थी ये फिल्म।

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने, दोनों गीत मुझे बहुत पसंद आए और पहला गीत भी बहुत कम बजता है लेकिन आज के प्रोग्राम में मैंने शामिल किया। आपने लास्ट कब सुना था मुझे ज़रूर बताइएगा, पर मैंने बहुत अरसे के बाद इस गीत को मैंने प्ले किया और उसकी एक वजह थी। वजह ये थी कि ये गाना पिक्चर में नहीं था, फेमस बहुत हुआ था लेकिन दिस वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द सीन, मतलब किसी भी सीन में नहीं था, फिल्म के बीच में दिखाया नहीं गया था। ये फिल्म थी आतिश जो कि 1994 में आई थी एंड इस फिल्म में किसने काम किया था, संजय दत्त थे, आदित्य पंचोली थे, रवीना टंडन थी, करिश्मा कपूर थी, अतुल अग्निहोत्री भी थे, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, कादर खान, अजीत, तनुजा, बहुत अच्छी स्टार कास्ट थी इस फिल्म की और संजय गुप्ता जी ने इसे डायरेक्ट किया था। फिल्म का संगीत था नदीम श्रवण का और नदीम श्रवण 1990s में बहुत बहुत फेमस थे, बहुत सी फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया था। तो इस फिल्म के भी सारे गाने अच्छे थे लेकिन ये गाना जो था ये फिल्म में नहीं था, इसलिए मैंने आज के प्रोग्राम में इसे शामिल कर दिया। दूसरा गीत फिल्म आहिस्ता आहिस्ता से मैंने चुना था, 1981 में आई थी ये फिल्म। इसमें पद्मिनी कोल्हापुरी थी एंड और कौन था भी, याद कराइए सरिता को, कुणाल थी एंड नंदा थी, शमी कपूर भी थे, यस याद आ गया। और इस फिल्म का आहिस्ता आहिस्ता का संगीत तैयार किया था खयाम साहब ने। इस फिल्म के भी सारे गाने बहुत फेमस हुए थे। अब मुझे बताइए कि इसमें जो मेल वॉइस थी, क्या आपने उस मेल वॉइस को पहचाना? अगर पहचाना तो मुझे बता सकते हैं, अगर नहीं पहचाना है तो चलो मैं बता देती हूँ। इन्होंने बहुत सी गीत गाए हैं, लाइक रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, ही रांझा का गीत था, देन सोनी मेरी सोनी वो गाना भी इनका गाया हुआ है, मोहब्बत अब तिजारत बन चुकी है वो गाना भी इनका काफ़ी फेमस हुआ था, ये प्यार था या कुछ और था ये भी इन्होंने ही गाया था। कौन है, किसकी बात कर रही हूँ, मौसम मौसम लवली मौसम याद आ गया, कौन है ये सिंगर, इनका नाम बताइए जल्दी से व्हाट्सएप कर दीजिए। नहीं याद है व्हाट्सएप नंबर तो मैं बता देती हूँ।
1: WhatsApp message like a gold now on 0744-232323.
0: सो भाई देर मत कीजिएगा, जल्दी से मुझे बताइए किस सिंगर की मैं बात कर रही हूँ जिनकी आवाज़ में गाए हुए इतने सारे गाने बहुत फेमस हुए हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा गीत नहीं गाए लेकिन जितने भी गीत गाए बड़े फेमस हुए हैं। सो देर मत कीजिए, जल्दी से मुझे मैसेज भेजिए, तब तक मैं ये काम कर लूँ।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, your £1 in British sterling can get you today at this moment 128 rupees and 15 paisa. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be into a £75 voucher. Every day, जी हाँ every day, when you send over £1,000 and also a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: At B&Q, get 20% off outdoor plans in-store and 20% off selected outdoor living. You can do it. Offer ends 1st of June. For full T's and C's, see DIY.com.
1: This is Sarita Sabharwal on Like a Gold.
3: Like a Gold.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
5: गारंटेड
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
5: फोन 0208574-8410।
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574-8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
3: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
1: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
3: plus beautiful jewelry and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
1: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
7: सिरीन हॉलीडेज अपनी पूर्व अफ्रिकाना स्थलोनी मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे। कंपाला, नैरोबी, मुंबासा, जांजिबार अने दारेसलाम साथे जिंजा अने मचिसन फॉल्स।
8: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ।
7: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे। वधु माहिती माटे
8: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
7: 0116266481 पर। वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर।
9: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
10: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
9: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
10: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
9: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
10: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
9: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
11: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel, and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
12: Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoon.com.
13: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था।

0: कौन है।
1: शम्मी कपूर साहब पर ये गाना पिक्चराइज हुआ था। ये थे इस हफ्ते के हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक एंड फिल्म का नाम था तुमसे अच्छा कौन है। शंकर जयकिशन का संगीत और हीरोइन थी इस फिल्म की बबीता। Like a
2: gold. Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
1: भाई इरफान आप भी अभी आए हैं, थैंक यू सो मच। एंड सभी ने ठीक जवाब दिया, अनवर की आवाज़ थी। यस फरूक, थैंक यू।

0: Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: ऐसे प्यारे प्यारे गीत हमारे प्रोग्राम में शामिल रहते हैं जो आपके दिल को भाते हैं. थैंक यू एवर सो मच कि इतने प्यार से मुझे मैसेजेस आप भेज रहे हैं. अगला गीत, वेल, इस फिल्म के सारे गाने ही बड़े मशहूर हुए लेकिन इस गीत को ज़्यादा जगह नहीं मिलती है. सोचिए कौन सा गीत होगा उमराव जान का जिसकी मैं बात कर रही हूँ. नहीं पता चला तो सुन लीजिएगा.
0: Like a Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavours from around the world, you can make every meal memorable.
2: यही वाला सोचा था? Beautiful song.

अभी हाल ही में मुजफ्फर अली साहब से मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनसे पूछा, रेखा इतनी खूबसूरत दिखी इस फिल्म में, आपने बनाया था, यूँ है ही ऐसी।

मासूम मुजफ्फर अली साहब ने कहा कुछ तो वो खूबसूरत हैं ही और कुछ हमारे जो आर्ट मैनेजर होते हैं वो बना देते हैं। वो कहती है वो वैसे भी आँखों से बातें करती हैं। आपने देखा होगा किस तरह से एक्टिंग की थी।

0: तो फिर शुरू हो जा सोनी।
1: हो जाता है प्यार,
0: प्यार किया
2: नहीं। बिल्कुल सच है ना, हो जाता है प्यार कब सोच समझ के कौन करता है। लव एट फर्स्ट साइट ही होता है किसी को, और किसी को आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है। राइट जी, था आज के प्रोग्राम का लास्ट नहीं इलास से पहला एक गाना। अब मेरी जाने का वक्त है, और जाते जाते मैं थैंक्स करना चाहूँगी अपने उन सभी साथियों का जो 4 बजे से लेकर अब तक मेरे साथ हैं, और हर गीत के बाद मुझे एहसास दिलाते रहे कि बहुत अच्छे लग रहे हैं गाने। ब्रिज, शोभना एंड राज, आप भी सुन रहे हैं, आपके नाम भी आ रहे हैं आज के प्रोग्राम का लास्ट गाना। लेकिन उससे पहले आपको कुछ मैसेजेस सुनने होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, सैंडी इज़ नेक्स्ट आफ्टर 7 o'clock न्यूज़। हैव अ लवली डे।
3: Travel in style, offer the best prices in flights and holidays to any destination of your choice. Call now for your early bird discount. 0208 954 0077. That's 0208 954 0077. Travel in style, fully bonded for your peace of mind. Travel in style. Travel in style. Travel in style.
4: The voice that touches every soul.
5: Yeah,
4: Star Express presents Hariharan's Soul India.
6: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
4: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
6: Exclusive radio partner, Lyco Radio Network.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
8: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
9: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
8: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
9: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
8: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
9: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
8: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
10: राम कृष्ण हरी, UK तैयार आहात ना? ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार व्हायला येत्या 6 जून ला होते है वाद्य महोत्सव 2026 रॉयल विंडसर रेस कोर्स SL4 5JJ। 100 ढोल, 80 ताशे, मराठी खाद्य संस्कृतीची चव घ्यायला आणि मराठी उद्योजकांना भेटायला नक्की या। महाराष्ट्राची परंपरा, संस्कृती आणि आनंदाचा जल्लोष आणि विठ्ठल नामाचा गजर हा सोहळा तुम्हाला लाइव्ह बघायला नक्कीच आवडेल। थेट भारतापासून UK पर्यंत सर्वांना जोडणारा एकच नाद वाद्य महोत्सव। टिकट्स आता उपलब्ध आहे svrtuk.org। जय हरी विठ्ठल।
11: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
12: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
11: ये तो बताओ, कोई पता चला?
13: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
14: चालू तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
11: शीघ्र शीघ्र।
13: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208 514 5400। बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
15: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
16: Location, location, location.
17: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
16: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
17: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
16: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
17: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
16: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
17: To book, call our London office on 02
5: 0239635757. Greens by Danube. Prime location.
18: High appreciation.
5: In Dubai.
19: Are we there yet?
20: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
21: Relax. I've booked the Uber already.
20: How? My roaming isn't even working yet.
21: I switched to Simzy before we left London.
20: Simzy? Since when are you the tech expert?
21: Since I decided I want a stress-free holiday.
22: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
23: T's and C's apply.

0: Acacia Rice is now available at Pick and Save Kenton Road, Harrow. Join us this weekend for great offers and exclusive tastings. Tisha Basmati
1: Rice. एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज कॉल करो 0203-773-6333 मंत्रा हॉलिडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
2: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care, available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
0: Fly more, pay less with Leica Fly. Grab cheap flights to India, the Philippines, Africa and Pakistan. Book now, pay later. All at all protected. Call 0207-132-0700 or visit leicafly.com. Leica Fly. Fly more, pay less.
3: मीनार ज्वेलर्स अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com कॉल 0208-767-7627
4: सरिता सबोवाल विद योर वीकेंड क्लासिक्स

0: Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics.
1: मैं हूं अश्विनी. हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अ गोल रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी. फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग आप सभी के लिए.

0: Mecca Radio Network across London, Manchester, and the Midlands. The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
1: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
0: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
1: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
0: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
2: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
3: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स your travel mantra.
4: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
1: Atif Aslam live in the UK.
5: Dil diya galla karange na.
4: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
1: Book your tickets now at AXS.
4: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
1: Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
9: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
8: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
9: गारंटेड
8: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
9: फोन 02085748410।
8: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
0: Up next, non-stop classics on Gold Nights on Leica Gold. This is the number one Asian commercial group in London, consisting of Leica Radio and Leica Gold.

0: अरे अरे मैं भी हो गई लाल।
1: साधु साधु।
0: फिर रात हुई, एक बात हुई, चोरी चोरी चोरी मुलाकात हुई।
2: फिर
0: फुर फुर फुर फुर। बताओ नी बड़ी क्या बात हुई।
3: कह दो
0: कह दो कह दो
3: कह दो।

0: पराई।
1: रघुकुल रीत चला चती चल, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचाना ना जाई,
2: जाई जाई
1: बन चले राम रघुराई,
0: बन चले राम रघुराई,
1: चाणक्य हो
0: बन चले राम रघुराई,
1: चाणक्य
0: बन चले राम रघुराई।
1: चाणक्य पंडित बोल गए ये गुरुम।
3: अरे अरे भालू आया
4: नहीं? आया
3: तो फिर सो जाओ।

0: non-stop classics. This is Like a Goal.
1: चलो जाइए एक नवा सफर पर सिरीन हॉलिडे साथे।
2: सिरीन हॉलिडेज अपनी पूर्व अफ्रीकाना स्थलोनी मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे। कंपाला, नैरोबी, मुंबासा, जांजिबार अनि दार एस सलाम साथे जिंजा अनि मचिसन फॉल्स।
3: बस पैक करो अनि रिलैक्स थई जाओ।
2: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे। वधु माहिती माटे
3: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
2: 0116266481 पर। वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर।
4: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like R. Radio.
5: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
6: No more worries for me or you.
7: Southall Travel, auto protected.
8: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
9: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
10: 25? Seriously?
9: Sounds like Ojo time.
10: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bash Bonanza, plus instant payouts on winnings.
9: Sorry about the wait. How can I help?
10: You can help me celebrate. I won.
11: Feel the fun. Play Ojo.
12: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus. Gambler aware. T's and C's apply.
13: Backed for the trip. Gifts. Passport.
14: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
13: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
14: Simzy?
13: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
15: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
4: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
7: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com।
16: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ, सिर्फ लाइका गोल्ड पर।